शनवंद गाने अजीज तरा नहीं ये बादीरा बे सदा ये विशाल इस्तेमा बेफरमाइद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिड़ला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Both the Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. Lok Sabha Speaker Om Birla alleged that some opposition members are deliberately disrupting the question hour, which is not appropriate. He added that obstructing the proceedings of the House in a planned manner is not in accordance with Parliament.

0: हर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेणु। तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंफ्रास्ट चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलके रहेंगे जो खिलने वाले हैं।

दिल अपना और प्रीत पराई, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो सबसे पहले आप सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जीवन को दिशा देने वाला आज का ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, और योग परंपरा के अनुसार इसी दिन शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देकर अपने गुरु का पद संभाला था। ये त्यौहार उन गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है, जिन्होंने हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। हमारी संस्कृति और परंपरा में जीवन में ज्ञान, अनुशासन और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसीलिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण की गुरु गीता में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै गुरु गुरुवे नमः।

हमारे गुरु भी हमारे माता पिता के समान होते हैं और हमारे माता पिता भी गुरु तुल्य होते हैं, आदरणीय होते हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के सानिध्य में करते हैं। तो सही गलत का फैसला हमारा करना यही हमें सिखाते हैं। तो ये गीत आपने सुना, फिल्म थी मैं चुप रहूंगी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इसी के साथ जो हम अपने कार्यक्रम में दिन विशेष की बात करते हैं, तो दिन विशेष में आज बता दें कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो माँ दुर्गा का वाहन है और शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक भी है और है हमारा राष्ट्रीय पशु। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य बाघ संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और बाघों के प्राकृतिक आवास का प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि बाघों का और हमारा साथ लंबे समय तक यूं ही बना रहे, जिससे हमारी भावी पीढ़ियां जंगल की इस शानदार प्रजाति को देख सकें। और जब बात ये हो दिन विशेष की हो ही रही है, तो आजकल भाई सबसे ज़रूरी बात जो राष्ट्रमंडल खेलों की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, और इसमें अब बड़ी खुशी की बात है कि बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। तो बारिश के मौसम में पदकों की बारिश भी लगातार जारी है और कुल पदकों की संख्या अब हमारी 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हैं। 40 वर्ष की शर्मिला धनकड़ जो हैं, 2 बेटियों की माँ भी हैं, उन्होंने ये सफलता विपरीत पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के बाद अर्जित की है, और इन्होंने गोल्ड मेडल दरअसल इन्होंने अर्जित किया है, और ये पैरा एथलेटिक्स इवेंट के सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके ये मेडल इन्होंने जीता है। और इसी तरह से ज्ञानेश्वरी यादव हैं, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाया है, और बिंदिया रानी देवी हैं, शिल्पा शायला भी हैं, जिन्होंने अपने इवेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही आज एक हरजिंदर कौर जो हैं, वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक इन्होंने जीता है। तो हमारे कार्यक्रम की ओर से हम इन सभी को, इन सभी एथलीट्स को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और इसी तरह खेलते रहिए और देश का मान बढ़ाते रहिए। और अब समय है, जैसा कि आप लोगों को इंतज़ार होगा, अब समय है आज का सवाल पूछने का। तो आपको बताना है कि हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा आप अपने घर में किस भाषा में बात करते हैं, यानी आपकी मातृभाषा क्या है। तो अपने जवाब हमें लिख के भेजिए, वही हमारा एड्रेस है FMGoldGA@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके उत्तर का इंतज़ार।

अपना देश, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और दुनिया में कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें दुनिया उनके जाने के बाद भी याद करती है, सम्मान देती है, उनके कार्यों से प्रेरित होती है। ऐसे ही दो महान विभूतियों को आज हम याद कर रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनमें से एक है अरुणा आसफ अली, निर्भीक निडर स्वतंत्रता सेनानी और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, जिन्हें ओल्ड ग्रैंड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर तिरंगा फहराने जैसे साहसपूर्ण कार्य के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। और इसी तरह से जब देश की प्रगति और उन्नति की बात होगी तो उसमें JRD टाटा की अग्रणी भूमिका की बात भी ज़रूर होगी। जमशेद रतन जी दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा की आज जन्म जयंती है। वे देश के पहले लाइसेंसी पायलट थे और साथ ही देश की पहली कमर्शियल एयरलाइंस की नींव रखने वाले भी। वे पहले उद्योगपति थे, इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान, अन्य उद्योगों के माध्यम से उन्होंने देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा उच्च नैतिक मानकों का पालन किया, जिसमें ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता भी थी। तो आज हम सब अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं और उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो इसी के साथ तो मैं अपना सवाल फिर से आप लोगों को दोहरा देती हूँ कि आज का हमारा सवाल ये है कि आपको बताना है कि आप अपने घर में हिंदी अंग्रेजी के अलावा कौन सी और भाषा में बात करते हैं। गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, कुछ भी, जो भी आप अपने घर में अपने लोगों से बात करने में बोलते हैं उस भाषा के बारे में हमें बता दीजिए। तो हमारा मेल आईडी तो आपको पता ही है, FMGoldGA@gmail.com। तो हमें है इंतज़ार आपके जवाबों का।

वंदना फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, जो सवाल हमने आपसे पूछा था, आपके मेल्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम तक ये जो मेल एक पहुंचा है, गौरी शंकर नागलोई जी हैं, ये लिखते हैं कि राम राम। तो राम राम गौरी शंकर जी आपको भी। और ये कह रहे हैं कि 50 मील के बाद भाषा जो है वो बदल जाती है, थोड़ा बहुत जो शुद्ध हिंदी घर में नहीं कोई बोलता, वो जो है वो भाषा इतनी बदल जाती है कि आधी हिंदी आधी देसी भाषा हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ना, वो कहते हैं ना, हमारी देश में कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी, तो बिल्कुल सही बात है। ये लोकोक्ति जो है बिल्कुल चरितार्थ है कि थोड़े थोड़े दूर पे भाषा जो है हमारी बदल जाती है, बोलियां बदल जाती हैं। और लेकिन यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, विविधता है इसी में। और इसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, ये है महेश, हाँ महेश अग्रवाल जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो है घर में तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन हम लोग जो है अपने घर घर में अपनी ही भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपने लोगों से जब अपने में और हरियाणवी में बात करते हैं तो ठीक है। महेश अग्रवाल जी बहादुरगढ़ से आप लिख रहे हैं, हरियाणा से, तो बिल्कुल हरियाणवी आपकी मातृभाषा है और आप अपने लोगों से अपने घर में हरियाणवी में बात करते हैं, तो ये बहुत ही अपनापन आपको महसूस होता होगा। सभी को महसूस होता है जब लोग अपने घर में अपने लोगों से जब तक अपनी भाषा में बात ना कर लें तो वो अपनत्व नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। और भाषा तो हमारी जो है वो कहा जाए कि शुरुआत में जिस भाषा में हम सीखते हैं, बच्चा सीखता है, वो उससे उसकी कल्पनाएं और उसकी आत्मविश्वास इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उस भाषा को वो अच्छी तरह जान जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जैसे कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोसूल। तो ही कोसूल भी उसी से मिटता है, मतलब यानी हमें सुकून भी देता है, और इसी यहीं पर हमारी उन्नति का मार्ग भी है। और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करना चाहूँगी खुर्जा की। तो खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में प्राचीन और सुंदर सिरेमिक यानी चिकनी मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में इसे इसी नाम इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बनते हैं मिट्टी के कलश, त्योहारों के दिए, रोजमर्रा के खाने पीने के बर्तन, सजावटी वस्तुएं, फूलदान, जार, सो पीस और देवी देवताओं की मूर्तियां, और भी कई सारे ढेरों सामान यहाँ पे बनते हैं जो किसी भी घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। और खुर्जा की ये कला लगभग 600 साल पुरानी है। दिल्ली के पास बसे प्रवासी कुम्हारों ने फारसी और मध्य एशियाई तकनीक को भारतीय डिजाइन के साथ मिलाकर इस कला को विकसित किया था। इन चीज़ों में हाथ से की गई जो नक्काशी होती है, फूल पत्तियां और लताएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखते ही बनती हैं। और परंपरागत रूप से ये हल्के सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर नीले या भूरे रंग से बनाए जाते हैं। इनमें उपयोग होने वाला रंग ग्लेज लेड फ्री फूड ग्रेड होते हैं, जिससे कि माइक्रोवेव और सेहत के लिए सुरक्षित होते हैं। ये बर्तन चमकदार होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी होते हैं, क्योंकि ये बर्तन हाथ से तैयार किए जाते हैं। तो भाई, अगर ये उम्मीद करें आप कि एक जैसे दो बर्तन मिल जाएंगे, तो ये नहीं होता, एक जैसे दो बर्तन नहीं मिलते। और अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं तो एक बार दिल्ली से मात्र 85 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर में एक बार जरूर जाइए। और सिरेमिक पॉटरी के साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर मिलती है 115 साल पुरानी मशहूर मिठाई खुरचन, तो इसे भी लेना जरूर, मतलब जरूर लेना चाहिए आपको। और ये मिठाई ना दूध को धीमी आंच में उबालकर मलाई की परतें जमा कर बनाई जाती है, तो इस मिठाई का स्वाद भी वहां पर जा करके आप जरूर लीजिएगा।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म आवाज़ थी लता मंगेशकर और रफ़ी की। और इसी के साथ देखिए, आपके मेल्स हमारे पास आते जा रहे हैं, और ये मेल है हमारे पास जो सुदर्शन मुखी का। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लिख रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। तो आप लिख रहे हैं कि मैं अपने घर में हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा पंजाबी और हरियाणवी में बात हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सुदर्शन जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पंजाबी में, यानी ये अभी आपकी मातृभाषा होगी और इसे आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें बात करते हैं। तो देखिए, पंजाबी से याद आया मुझे, तो पंजाबी में बहुत मशहूर लेखिका थी अमृता प्रीतम जी, उनकी कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। कृष्णा सोपती जी हैं, वो लिखती थी। तो उनकी एक कविता की एक लाइन मुझे याद है, मैं तेनू फिर मिलांगी कब किथे पता नहीं। तो बहुत अच्छी मीठी लैंग्वेज है ये भी। और उसके बाद आप लिख रहे हैं, ये हैं अग्रसेन यादव जी। तो अग्रसेन यादव जी भी लिख रहे हैं कि इन्हें भी अपने घर में, और हम लोग आपस में सब अवधी में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। और देखिए, अवधी और भोजपुरी का नाम आपने लिया, तो देखिए ना, भाषा हमें अपने क्षेत्र का की पहचान अपने आप हमसे करा देती है, क्योंकि अवधी और भोजपुरी आपने बताया तो अपने आप जो है इंसान सोच लेता है कि आप अवध क्षेत्र से संबंध रखते होंगे। जैसे कि अवधी बोली जाती है लखनऊ में, अयोध्या में, और भोजपुरी का भी वो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वही उसका क्षेत्र है, तो आप जरूर वहाँ से संबंध रखते हैं। और भाषा ना अपने साथ संस्कृति को समेटती है, क्षेत्र को समेटती है, तो भाषा को जिंदा रखना यही बहुत ज़रूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो तभी आगे पहुँच पाएगी जबकि अपने घर में हम उसे अपने लोगों में बोलते रहेंगे, और इससे हमारे बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे, और इस तरह से भाषा जो है वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ ही अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उड़ान यात्री कैफ़े की। यानी कि उड़ान यात्री कैफ़े, जो कि आप सुन रहे होंगे कि क्या है ये, तो ये है कैफ़े जो एयरपोर्ट पर मिलने वाले

और अहमदाबाद जैसी चुनिंदा हवाई अड्डों के टर्मिनल क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराई गई है। तो ये सुविधा कम बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तो भाई बहुत लाभप्रद है ही। तो अगली बार जब आप हवाई यात्रा पर जाएं तो उड़ान यात्री कैफे की इस सुविधा का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये सुविधा है आप ही के लिए।

जी कदम के निशान बना के चले। और ये गीत अभी आपने सुना ज्वेल थीफ से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और इसी के साथ आपके मेल्स आते जा रहे हैं हमारे पास, और अभी जो मेल हमें प्राप्त हुआ है वो है कमाईनी जी का, मोती लक्ष्मी नगर से। तो ये लिख रही हैं कि इनका गांव उत्तर प्रदेश में है, वैसे जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ अवधी भाषा में बात करते हैं, और जब वहाँ से लोग आते हैं तो उनसे भी अवधी में बात करते हैं। अपनी मातृभूमि में बात करना एक अलग सी खुशी देता है। बिल्कुल सही कहा आपने कमाईनी जी, बहुत ही खुशी होती है। और जब लोग एकदम से कहीं आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे उस क्षेत्र में कोई आपको जानने वाला ना हो, लेकिन एकदम से जब अपनी भाषा वहाँ सुनाई देती है ना, तो कुछ अपनेपन का एहसास अब बाहर हो जाता है। तो घर में आप बात करती हैं, बहुत अच्छी बात है। यही हमारी चीजें जो है

अगली पीढ़ी तक कन्वे होंगी और वो सीखेंगे भाषा को। और इसके साथ ही इद्रिस सैफी जी कह रहे हैं कि खुरजा रास्ते में पड़ता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है कि किस भाषा में ये बात करते हैं। भाई इद्रिस जी, आपने लिखा खुरजा रास्ते में पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप खुरजा जाते रहते हैं और बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें आप वहाँ से लाए होंगे, लेकिन अपने कौन सी भाषा में बात करते हैं ये भी लिख दीजिए। और इसके साथ ही नवीन भाटिया मोतीनगर से लिख रहे हैं कि ये घर में सिंधी बोलते हैं, तो भाई बहुत ही खूबसूरत भाषा है ये सिंधी, और आप बोलते हैं ये बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए अपने घर में लोगों से, इसी में बात करनी चाहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में अगली बात मैं करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य की बात, क्योंकि बरसात का मौसम देखिए चल रहा है और आजकल बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बना रहता है, तो डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होने वाला वायरल बुखार है, जिसमें कि तेज बुखार, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में असहनीय दर्द, आंखों में दर्द, शरीर या चेहरे पर लाल रंग के दाने या चकत्ते उभरना, थकान और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर स्थिति में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टियां आना, नाक या मसूड़ों से खून बहना और प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण आप में भी या आपके परिजनों में दिखाई देता है, तो इसे साधारण बुखार नहीं समझना चाहिए, बल्कि बिना देर किए आप डॉक्टर से संपर्क करें। और ये बिल्कुल ना करें कि थोड़ी राहत पाने के लिए आप कोई दर्द निवारक दवा लें और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें, क्योंकि इसका असर तो इस डेंगू के बुखार में होता नहीं है। और डेंगू से बचा जा सके इसके लिए भी सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी हैं। और ये सावधानियां हैं जैसे कि आप पानी कहीं जमा ना होने दीजिए, क्योंकि देखिए ना, याद रखिए कि डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है। कूलर, गमले, बाल्टी या छत पर पुराने टायर आदि में पानी इकट्ठा ना होने दें। जितना संभव हो शरीर को ढक कर रखें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करें। घर के आसपास कीटनाशकों का छिड़काव करें और पानी की टंकियों को हमेशा ढक कर रखें।

ये गीत अभी आपने सुना, झुक गया आसमान से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इसी के साथ ही अब हमारे कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है। तो भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने श्रोताओं से, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मेल नहीं ले पा रही हूँ। तो फिर कभी आपका मेल ज़रूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल ही में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है। उन्होंने इस महीने होर्मुज से गुजरने के दौरान जीएफएस गैलेक्सी, एमटी अल बहिया और एमटी मुंबासा सहित कई जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा से ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली। डॉ शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति की समीक्षा की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बहाली और पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार के हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 823 अंक बढ़कर 77,588 तथा निफ्टी 236 अंक की वृद्धि के साथ 24,221 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Lok Sabha has resumed discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, had moved the bill in the House yesterday. Participating in the discussion, JDU MP Dileshwar Kamath expressed gratitude to Prime Minister Narendra Modi for bringing the bill in the Parliament, stating that it will ensure a brighter future for students while enhancing transparency in the education system. Opposing the bill, N.K. Premachandran of RSP said that the bill is inadequate to achieve the purpose stated in the bill. He alleged that the changes brought in the proposed bill are merely cosmetic. The Rajya Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. When the House reassembled at 12 noon after the first adjournment, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but opposition members started sloganeering, pressing their demands. The Lok Sabha has extended the tenure of the Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the Winter Session 2026 of Parliament. The chairman of the committee, BJP MP P.P. Chaudhary, moved the motion to extend the tenure of the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. The bill seeks to introduce simultaneous polls to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. The motion was adopted by voice vote in the House. Several BJP MPs, including from Jharkhand, today staged a protest at Parliament premises over the alleged paper leak of the Jharkhand Public Service Commission examination, demanding a CBI inquiry into the case and the resignation of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma and reviewed the ongoing relief efforts in the wake of the devastating floods in Upper Assam. In a social media post, Dr. Sarma said that the Union Home Minister reiterated that all agencies and resources of the central government are at the disposal of the people of Assam during this difficult time. Meanwhile, relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Sibsagar, Golaghat, Charaideo and Jorhat. With the situation gradually returning to normal, floodwaters have receded from most affected localities, although some areas remain inundated. India has strongly condemned recent attacks on several maritime vessels in the Strait of Hormuz, saying targeting of commercial shipping and civilian infrastructure in the region must end. Permanent representative of India to the United Nations, P. Harish, said after a brief pause in the ongoing conflict in the region, there has been a worrying resumption of attacks and escalation of hostilities. Mr. Harish said that free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways must be restored. The Supreme Court dismissed a plea filed by the Odisha government against the release of the film Mahaprabhu Jagannath, saying that animation is a new form of art created for children and cannot be curtailed because of such petitions. A bench comprising Justices B.V. Nagaratna and R. Mahadevan heard the arguments and declined to modify its earlier order, which allowed the release of the film. The Odisha government had contended that the release of the film could create law and order issues after objections were raised by some sections on the depiction of Lord Jagannath. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats, and address the declining number of wild tigers. Vice President and Prime Minister extend greetings to the wildlife enthusiasts on the day. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that with the world's largest wild tiger population, India's success reflects sustained efforts in habitat conservation, scientific monitoring, anti-poaching measures, and the unwavering dedication of forest personnel, scientists, conservationists, and local communities. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जहां हम आपको सुनाते हैं फिल्मों से जुड़ी अनसुनी कहानियां और आपके पसंदीदा गाने। आज हम बात करेंगे 1964 में आई सुपरहिट फिल्म की, जो दोस्ती, मोहब्बत और भावनाओं की कहानी है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म आई मिलन की बेला की। इस फिल्म का निर्देशन मोहन कुमार ने किया था, जबकि पटकथा सचिन भौमिक ने लिखी थी। फिल्म के निर्माता थे जे ओम प्रकाश, जिनकी शानदार प्रस्तुति ने इसे एक यादगार फिल्म बना दिया। और भी बहुत सी बातें करेंगे फिल्म के बारे में, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

दोस्तों डायरेक्टर मोहन कुमार की इस फिल्म में मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र के साथ राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, शशिकला जैसे सितारे नजर आए और साथी कलाकारों में थे गजानन जागीरदार, सुलोचना लटकर और नजीर हुसैन। धर्मेंद्र ने अपने करियर में रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर खूब नाम कमाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में आई मिलन की बेला में पहली और आखिरी बार विलेन का किरदार निभाया था। और मजे की बात तो यह है कि इस फिल्म के बाद वो हीरो के तौर पर इतने मशहूर हो गए कि फिर कभी नेगेटिव रोल नहीं किया। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वहीं राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी।

दोस्तों, अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो एक अमीर व्यक्ति की दुनिया उस वक्त बिखर जाती है इस फिल्म में, जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। अपनी पत्नी को इस सदमे से बचाने के लिए वो नर्स की सलाह पर अपनी नौकरानी लक्ष्मी यानी सुलोचना लाटकर के जुड़वा बेटों में से एक को गोद ले लेता है। आगे क्या होता है बताएंगे आपको इस गाने के बाद।

0: दोस्तों, समय बीतता है और जुड़वा भाई अलग-अलग परिवेश में बड़े होते हैं। श्याम यानी राजेंद्र कुमार अपनी गरीब माँ के साथ गांव में बड़ा होता है और किसान बनता है, जबकि रंजीत यानी धर्मेंद्र अमीर माता-पिता की देखरेख में शहर में पला बड़ा होता है। श्याम गांव के किसानों की भलाई के लिए श्री चौधरी यानी नजीर हुसैन के सहकारी आंदोलन से जुड़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात श्री चौधरी की बेटी बरखा यानी सायरा बानो से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इस बीच रंजीत यानी धर्मेंद्र विदेश से लौटकर उसी गांव में अपनी माँ के साथ रहने आता है। कुछ ही समय में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बीच कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके सामने एक बड़ी परीक्षा रखने वाली है। रंजीत को भी बरखा से प्यार हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि बरखा भी श्याम से प्यार करती है, तो बरखा के प्यार को खोने का अपमान और उसे पाने का जुनून, और बस यहीं से शुरू होता है रंजीत की भूमिका का ग्रेट शेड्स, और जल्द ही गलतफहमियों और षड्यंत्रों का दौर शुरू होता है। श्याम पर चोरी और एक अन्य झूठा आरोप लगाया जाता है। परिस्थितियां बिगड़ती है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है। रंजीत को अपनी असली पहचान का पता चलता है और दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं। फिल्म दोस्ती, प्रेम, त्याग और सच्चाई की जीत की एक भावनात्मक कहानी है।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कदे फटे या पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

दोस्तों, इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। फिल्म में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। दोस्तों, अपने शानदार संगीत, दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के कारण ये फिल्म आज भी क्लासिक मानी जाती है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसे आज भी याद किया जाता है।

कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म थी आई मिलन की बिना। बहुत से दोस्तों ने हमें मेल किया है, तो चलिए आइए देखते हैं किन किन दोस्तों ने हमें मेल किया है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। गांव लोगर ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, कुरनूल गिल, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित। अगला मैसेज आया है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। अगला मैसेज किया है जी हमें बागवत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने। अब सुन लेते हैं एक गीत और उसके बाद फिर पढ़ेंगे आपके मेल।

दोस्तों अगला मेल आया है संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भारत मकड़, कमल सहानी का। इन्होंने हमें मैसेज किया है पिंगा वाला चौक गोरैया जलंधर पंजाब से, और अगला जो मैसेज आया है मैसेज गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा और पूनम गंगनेजा, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।

दोस्तों इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत, नमस्कार। 2:30 पर एक ही कलाकार में आपके साथ रहेंगी राखी बनर्जी।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम अभी आपने सुना। हमारी आज की फिल्म थी आई मिलन की बेला। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो इस मामले पर लोकसभा में बहस से कतरा रही है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिला है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है और आज दुनिया भर में शेरों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ्फुज़ की कोशिशों में भारत सबसे आगे है और दुनिया के कुल शेरों की तादाद में से लगभग 70% भारत में पाए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पर गौर खोज और मंजूरी के लिए बहस जारी है। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2024 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तिजामात हैं जिनमें मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और सजा याफ्ता अफराद की जायदाद जब्त करने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमत और मर्क

0: बनाए हुरमुस से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाजों की बिला रुकावट और आजादाना आमदोरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता दो दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खित्ते में फैली बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहिमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी यूके पीएनपी ने गहरी तश्वीश का जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। अभी अभी खबर मिली है कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज दुनियाभर में शेरों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ्फुज करना और इनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज करना है। इस मौके पर वजीर आजम ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हमाहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रवायात से फैजान हासिल हुआ है और आवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इन्हें और ज्यादा तकवियत मिली है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ्फुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निजाम के तहफ्फुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी के सीवरेज ट्रीट प्लांट के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से 2 अफराद की हलाकत पर नोटिस जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Lok Sabha continues discussion on public examinations prevention of unfair means amendment bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And now the news in detail. The Lok Sabha continued discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Participating in the discussion, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, said the education system in the country has now become very expensive. He alleged the money spent on conducting NEET UG examination is more than the education budget of the country. Mr. Gandhi said that the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul.

0: a cumulative foreign direct investment of over $31 billion and remittances of more than $52 billion from GCC alone.
1: At least 40 people were killed and dozens injured in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, over the last 2 days during a brutal crackdown by Pakistani forces amid escalating unrest in the region. Citing reports, the United Kashmir People's National Party on Wednesday alleged that around 40 civilians were killed while several others were injured and arbitrarily arrested between 27th and 28th of July in Rawalkot, Mirpur and other areas of the occupied territory. International Tiger Day is being observed across the world today to raise awareness about tiger conservation, protect natural habitats and address the declining numbers of wild tigers. Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings saying India is home to 70% of the global tiger population. He noted that India's tiger conservation efforts are inspired by the nation's centuries-old culture of living in harmony with nature and powered by the collective will of the people. Addressing an event in New Delhi, Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said that tiger conservation is not merely about protecting one species but about safeguarding the entire ecological system and preserving India's compassionate relationship with nature.
2: India has made significant strides in conservation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. The tiger population has increased from 2,226 to over 3,600. Tiger reserves have expanded from 47 to 58 and elephant reserves have also gone up from 28 to 32. Underscoring the country's growing commitment to water conservation, designated Ramsar sites have also grown from 26 to 100.
3: Designated Ramsar sites ki sankhya 26 thi, jo badhkar ke ab 100 ho gayi.
1: During the event, he also launched ecotourism web portal developed by the National Tiger Conservation Authority. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha continues discussion on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Government says bill aims to strengthen students' confidence in examination system. Home Minister Amit Shah reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today, India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में अब समाचार विस्तार से लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो।

0: सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं इसी भी आई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र

0: शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
1: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
2: हाँ।
1: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
2: हाँ।
1: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
3: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
5: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
6: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई।

0: उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी, वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व की संख्या जो 28 होती थी, वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी, जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हीरो से लेकर विलेन तक हर किरदार में जान फूंक देने वाले एक्टर संजय दत्त को भला कौन नहीं जानता। फैंस और पूरा बॉलीवुड इन्हें प्यार से संजू बाबा कहता है। आज ही के दिन यानी 29 जुलाई 1959 को मुंबई में मशहूर एक्टर सुनील दत्त और एक्ट्रेस नरगिस के घर में एक बेटे ने जन्म लिया जो आगे चलकर संजय दत्त के नाम से जाने गए। आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम इन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। संजय दत्त की जिंदगी एक रोलर कोस्टर की सवारी रही जिस पर एक बायोपिक फिल्म संजू जो कि 2018 में बन चुकी है जिसमें इनका किरदार रणबीर कपूर ने निभाया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ऐसे में आज हम इनकी लाइफ से जुड़ी कुछ और अनसुनी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म यलगार का ये रोमांटिक सा गाना।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं संजू बाबा यानी संजय दत्त, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। पिता सुनील दत्त और माता नरगिस हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार थे, जिस वजह से इनका बचपन फिल्मी माहौल में बीता। इनकी दो छोटी बहन हैं प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। संजय ने अपनी शुरुआती एजुकेशन हिमाचल प्रदेश के लॉरेंस स्कूल सनावर से पूरी की है। बाद में इन्होंने मुंबई के एलिफ्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान इनका झुकाव फिल्मों की तरफ था। महज 12 साल की उम्र में इन्होंने पिता की फिल्म रेशमा और सेरा में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम किया। फिल्म में खुद सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान और राखी गुलजार जैसे दिग्गज एक्टर्स थे। फिर करीब 10 साल बाद पिता ने इन्हें अपनी फिल्म रॉकी में लॉन्च किया, जो हिट साबित हुई। पर इस दौरान संजय पर दुखों का पहाड़ टूटा, इस बारे में आगे जानेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं इनकी फिल्म रॉकी का ये बेहतरीन गाना।

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: को साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं संजय दत्त, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, 1981 में रिलीज फिल्म रॉकी से संजय दत्त ने एज ए लीड एक्टर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस दौरान मां नरगिस को कैंसर हो गया और फिल्म के प्रीमियर से 4 दिन पहले यानी 3 मई 1981 को नरगिस जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बात ने संजय दत्त को एकदम तोड़ दिया। हालांकि रॉकी फिल्म हिट हुई और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। इसके बाद संजय दत्त ने बहुत सी फिल्मों में काम किया और ज़्यादा और सफलता भी मिली। फिर 1986 में फिल्म नाम रिलीज़ हुई। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इस फिल्म में संजय दत्त की एक्टिंग ने इन्हें एक सीरियस और सेंसिटिव एक्टर के रूप में पेश किया। फिल्म नाम में संजय दत्त के बहनोई कुमार गौरव ने भी साथ काम किया। इसके बाद संजय दत्त ने ईमानदार, जीते हैं शान से, इलाका, हम भी इंसान हैं और कानून अपना अपना जैसी हिट फिल्मों में काम किया। पर फिर आया वो दौर जो संजय दत्त के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं इनके फिल्म साजन का ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग।

दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज के जो कलाकार हैं वो हैं संजू बाबा। दोस्तों, 90 के दशक में संजय दत्त ने अपने मल्टी टैलेंटेड एक्टिंग का नमूना दर्शकों के सामने पेश किया। फिल्म साजन में इनके रोमांटिक किरदार को खूब पसंद किया गया और इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए अपना पहला नॉमिनेशन भी मिला। फिल्म की स्टोरी सॉन्ग दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म ने बम्पर कमाई की। इसके बाद फिल्म सड़क भी हिट साबित हुई। फिर सुभाष घई की फिल्म खलनायक में संजय दत्त ने एक नेगेटिव रोल किया और इस फिल्म ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म में संजय दत्त के बल्लू बलराम के किरदार को आज भी याद किया जाता है। फिर इन्होंने दौड़, कारतूस, खूबसूरत, हसीना मान जाएगी, दाग द फायर और वास्तव जैसी हिट फिल्में दी। इस दौरान संजय दत्त की निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, पर हर बार संजय दत्त ने मजबूती से कमबैक किया। आगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको हम बताएंगे, उससे पहले चलते हैं और सुनते हैं इनके फिल्म सड़क का ये एवरग्रीन सॉन्ग।

0: को साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में ना भूलने वाले कॉमिक और इंस्पायरिंग किरदार निभाया। फिर इन्होंने धमाल, डबल धमाल, ऑल द बेस्ट जैसी फिल्मों में दर्शकों को खूब हंसाया। इन्होंने इनकी जो निजी जिंदगी थी वो भी बहुत उतार चढ़ाव वाली थी और आगे हम बात करते हैं इनके अवार्ड्स की। आईफा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, स्टारडम अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। ये कभी भी स्टीरियोटाइप नहीं रहे। रौबदार अंदाज में बात करना हो या वॉक करना हो या फिर लंबे बालों के साथ ज़बरदस्त बॉडी, संजय दत्त ने करियर में हमेशा अपने स्वैग से फैंस का दिल जीता। ये वो चुनिंदा सितारों में भी शामिल रहे जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि विलेन बनकर भी दिल जीतने में कामयाब रहे। अग्निपथ का कांचा चीनी, मुसाफिर का बिल्ला, पानीपत का अहमद शाह अब्दाली या फिर KGF चैप्टर 2 का अधीरा, संजय दत्त ने पर्दे में ऐसे कई खतरनाक किरदार में जान डालने का काम किया। आगे भी इनकी बहुत सी अपकमिंग फिल्में आने वाली हैं जिसका दर्शकों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी पड़ाव में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में फिलहाल आज इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि 3 बजे आप सुनेंगे मैटिनी मेलोडीज मेरे साथ यानी राखी बैनर्जी के साथ और मेरे साथ मेरी दोस्त मीना चौहान के साथ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार
1: और मेरा मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार। राखी, कार्यक्रम के आरंभ में हम अपने श्रोताओं को क्या सुना रहे हैं?
0: देखो, प्रोग्राम तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हम पुराने 50s 60s के सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुनाते हैं प्रोफेसर फिल्म का गाना जिसे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, और मैं आपके साथ हूँ राखी बैनर्जी, और मेरे साथ है मीना
1: जी। राखी, ये गाना तुम्हें कैसा लगा?
0: बहुत ही बढ़िया। मीना, तुम्हें पता है कि कभी कभी मोहब्बत को अल्फाज की जरूरत नहीं होती है, एक नजर, एक मुस्कान और एक छोटा सा इशारा ही दिल की पूरी कहानी कह देता है।
1: बिल्कुल राखी, लेकिन जब दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुनने लगते हैं ना, तब खामोशियां भी गुनगुनाने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अगला गीत इसी तरह का है, तो चलिए सुनते हैं, और इसे हमने लिया है फिल्म कश्मीर की गली से।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: को साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों कहते हैं कि दुनिया हर रिश्ते को अपनी कसौटी पर जरूर परखती है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत भी उन्हीं एहसासों में से एक है ना राखी?
2: बिल्कुल बिल्कुल मीना, जब दिल किसी का हो जाता है ना तो हाँ। फिर ना दूरियां मायने रखती हैं और ना जमाने की बातें। इश्क ना किसी का हुक्म से शुरू होती है और ना किसी के डर से खत्म। ये तो बस खामोशी से दिल में उतर जाता है और फिर पूरी जिंदगी अपनी खुशबू बिखेरते रहता है।
1: बिल्कुल राखी,

0: फिल्म अप्रैल फूल में अभी आपने सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को सुना।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को, और इस ये जो वक्त है वो है मैटिनी मेलोडीज का, और मैं आपके साथ हूँ राखी, और
0: मैं हूँ मीना चौहान। दोस्तों, जानते हैं कभी कभी ना जिंदगी में कोई ऐसा चेहरा मिलता है जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि रूह को भी रोशन कर देता है। उसकी एक झलक से मौसम बदल जाते हैं और धड़कनों को नई धूल मिल जाती है और हर रास्ता मंजिल सा लगने लगता है, ना राखी? और
1: बिल्कुल
0: मोहब्बत की
1: बिल्कुल बिल्कुल कि मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो किसी शोर से नहीं, एक मासूम मुस्कान और एक सच्ची नज़र से अपना एहसास जता देती है। और जब दिल अपने महबूब की तारीफ में अल्फाज ढूंढता है तो लगता है जैसे हर शब्द कम पड़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए अब सुनते हैं ऐसे ही एक सदाबहार नगमा, जिसमें अपने प्रिय की खूबसूरती और उनके एहसास का बड़ा ही नफीस अंदाज में जिक्र किया गया है। और जो फिल्म है वो फिल्म क्या है?
0: बेटा बेटी, इसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, जानते हैं कुछ लोग अपनी आंखों से सब कुछ कह देते हैं, लेकिन होठों तक आते आते हर इजहार ठहर जाता है। दिल में मोहब्बत का समंदर होता है, मगर चेहरे पर सादगी की चादर ओढ़े रहते हैं।
2: बिल्कुल राखी, प्यार की यही तो सबसे प्यारी अदा है। कभी एक नजर में इकरार, तो कभी खामोशी में हजार बातें। छुपाने की जितनी भी कोशिश की जाए ना, सच्चा प्यार उतना ही आंखों से छलक उठता है। जैसा कि अगले गीत में हम सुनवा रहे हैं, फिल्म नीला आकाश से हमने ये गीत लिया है और जिसे गाया है
1: ये है मोहम्मद रफी और आशा भोसले के आवाज में।
2: बिल्कुल राखी।

0: दोस्तों, कभी-कभी दूरियां सिर्फ रास्तों में नहीं होती, बल्कि किस्मत में भी दो दिलों के बीच फासले लिखे होते हैं। लेकिन मोहब्बत, वो तो हर सरहद, हर दीवार और हर दूरी से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात मीना, कि दिल चाहता है कि काश ख्वाहिशों के भी पंख मिल जाते, तो ना कोई इंतजार होता, ना कोई मजबूरी, बस एक उड़ान होती और उस उड़ान की मंजिल होता अपना महबूब।
0: बिल्कुल।
1: तो आज का ये गीत भी उसी तड़प, उसी इंतजार और उसी मासूम चाहत का आईना है।
0: जिसे हमने लिया है फिल्म सहरा से, और इसे गाया है लता।

0: देखो ना राखी, देखते ही देखते आज की ये सुरीली महफिल अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है।
1: बिल्कुल सही बात, और उम्मीद है इन मधुर गीतों ने आपकी यादों को छुआ होगा, आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी होगी
0: और
1: और
0: दिल को कुछ सुकून भी दिया होगा, है ना।
1: सही बात,
0: जिंदगी की सबसे खूबसूरत दौलत वही पल होते हैं जो अपनों के साथ बिताए जाए।
1: और जब कोई पूरा दिन किसी की याद, उनकी बातों और उनके एहसासों में गुजर जाए तो वो दिन जिंदगी की सबसे हसीन याद बन जाता है।
0: जी तो चलिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म है जंगली और जिसे हम गाया है मोहम्मद रफी और

0: पेश करने। और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। मीना चौहान और
1: राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार, और छोड़े जाते हैं आपको इस गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

0: बनकर नौजवानों के किरदार व अफकार को चमका सकता है, संवार सकता है, मुल्क व कौम की तकदीर बन सकता है। बकौल शायर, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। आइए सामेईन, अब चलते हैं प्रोग्राम अक्सर अदब की तरफ। सामेईन, कहानी सुनने और सुनाने का अमल इंसान के लिए इब्तिदा से ही दिलचस्पी का बाइस रहा है। जैसे जैसे इंसान की समाजी ज़िंदगी में तब्दीली आई, वैसे वैसे कहानी के मवाद और मौजूआत बदलते चले गए। हिकायत, तमसील, किस्सा, दास्तान, नावल और अफसाना, यानी कहानी ने मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार की। अफसाना आज के अहद की मकबूल सिंफ है, जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े, जज्बे, ख्याल या मसले को फनकाराना अंदाज में पेश किया जाता है, जो एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। तो आइए सामेईन, गज़ाला कमर से उनका अफसाना सुनते हैं। अफसाने का उनवान है दरार।
1: तेज बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था, मगर एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी, जैसे किसी तूफान के आने से कबल हुआ करती है। मुझे खौफ का एहसास हुआ। तूफान, मेरा दिल धड़का और मैंने सबा को चौथी बार फ़ोन लगाया, मगर अब भी उसका फ़ोन बंद था। कहाँ है वो? मानती हूँ कि अब वो बच्ची नहीं है, बल्कि ख़ुद एक बच्ची की माँ है और अपने बारे में फ़ैसला लेने के लिए आज़ाद भी है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने का हक तो उसने उस वक्त इस्तेमाल किया था जब वो सिर्फ 20 साल की थी और ग्रेजुएशन कर रही थी। हॉस्टल से फ़ोन करके इत्मीनान भरे लहजे में उसने कहा था कि वो सुहेल से शादी करना चाहती है। क्या? मैं चौंक गई। मम्मा, मैं शादी कर रही हूँ, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या बात है? जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? ये मेरी ज़िंदगी है और उसके बारे में फ़ैसला लेने का हक है मुझे। मैं हक की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे मुस्तकबिल को लेकर फ़िक्रमंद हूँ। सुहेल कौन है, कैसा है? मम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ उसको। उसने फ़ोन रख दिया। उसके चंद जुमलों ने मुझसे एहतजाज का हक भी छीन लिया था। मैंने पूरी रात सोचते हुए गुजार दी, मगर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुझे यकीन था कि सबा का ये फ़ैसला जज्बाती है और जज्बात में किए गए फ़ैसले देरपा साबित नहीं होते, मगर ये सिर्फ मैं जानती हूँ। एक मुश्किल और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने के बाद एक लंबे तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया है, मगर सबा, वो तो अभी बच्ची है, अपना भला बुरा भी नहीं समझ रही। पिछले साल छुट्टियों में जब वो आई थी तो उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी को महसूस किया था मैंने। एक दोस्त बनकर उसका साथ देने की कोशिश की, फिर मुझे एक कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा। वापसी पर उसे फ़ोन किया तो उसकी चहकती आवाज़ मुझे तरोताज़ा कर गई। मैंने उसके लिए क्या क्या ख़रीदा है उसकी तफसील पूछ रही थी। मेरा गिल्ट कम हो गया। जिस वक्त मैं घर पहुंची, वो मौजूद नहीं थी। उसे मालूम था फिर वो कहाँ जा सकती है। स्टेशन गई हैं सुहेल साहब को छोड़ने। सुहेल साहब, ये कौन है? बाई ने जिस अंदाज से ये नाम लिया था, ऐसा लगा वो इस नाम से खासी मानूस है, मगर मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये सुहेल कौन है? मुझे इंतज़ार था कि सबा सुहेल के बारे में बताएगी। मायूस होकर मैंने खुद पूछा। दोस्ती का रिश्ता तो कभी था ही नहीं हमारा, मगर अब माँ बेटी के बीच किसी तीसरे की मौजूदगी ने एक दरार को ज़रूर जन्म दे दिया था, और इस वक्त वो दरार कुछ ज़्यादा ही थी। उसका जवाब मुझे मुतमईन नहीं कर सका। उसने बताया कि इंटरनेट चैटिंग के दौरान वो मिले हैं और अब एक अच्छे दोस्त बन गए, मगर मेरी गैर मौजूदगी में उसका आना ये एक इत्तेफाक है। वो अपनी आंटी से मिलने आया था, वो भी यहीं रहती हैं, बस। मगर मेरे लिए इस बस को यकीन करना मुश्किल था और मैंने उसे समझदारी से काम लेने की सलाह दी। मेरी बेटी थी वो, मैं उसे डांट सकती थी, समझा सकती थी, थप्पड़ भी मार सकती थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकी। सबा को सुहेल इंटरनेट पर मिला था और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर शादी? मम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारी है, वक्त ने मुझे बहुत मैच्योर कर दिया है। मैं खामोश हो गई। क्या जताना चाहती है वो? अपनी कौन सी महरूमी बताकर मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला कर रही है? मेरा ये कैरियर, शोहरत या फिर ये इज्जत जो बेहद मेहनत के बाद मुझे

0: हासिल हुई है। सबा 6 महीने की थी जब मेरी उसके पापा से अलहदगी हुई थी। एक अरसा बीत चुका है, कौन सही था और कौन गलत। तज्जिया करने का वक्त ना तब था और ना अब। बच्चे नौकरों के साथ नहीं पलते, आसिफ का ख्याल था और मुझे लगा कि ये वो नहीं बल्कि उसका एहसास कमतरी है। एक बात जब बहस बन जाए और लड़ाई की सूरत इख्तियार करने लगे तो क्या करना चाहिए? एक नई शुरुआत, ये मेरा ख्याल था और मैंने आसिफ से अलग होने का फैसला कर लिया। तकलीफ भी हुई और दर्द भी। मैंने सबा को अपना महवर बना लिया, मगर वक्त की अपनी चाल होती है। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरी मुलाकात अशर से हुई और उसने मुझे मेरे अंदर छिपी सलाहियतों को बाहर लाने के लिए उकसाया। बच्चे तो पल ही जाते हैं, बड़े होकर वो अपनी माँ पर फख्र करेगी। अशर की बात दिल में उतरी। सबा की देखभाल के लिए एक फुल टाइम मुलाजमा आ गई। अशर ने अपने नए प्रोजेक्ट में मुझे शामिल कर लिया। मेरे मजामीन जर्नल्स में आने लगे। सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के दावतनामे मेज पर सजने लगे। मैं औरत थी, वो भी ऐसी जिसको उसके शौहर ने छोड़ दिया था। क्यों, ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की। मेरी पीठ पीछे कहानियां बनाई जाती, मैं सुनती रही और जब नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया तो हम एक हो गए। अशर के साथ रहते हुए मुझे अक्सर आसिफ का ख्याल आ जाता, जहां सिर्फ घुटन थी, कैद थी, सही और गलत की तकरार थी। यहां आज़ादी थी, रास्ते थे, उड़ान थी और मैं परवाज के लिए तैयार थी। अक्सर मैं मुल्क से बाहर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने लगी। ऐसी ही एक ट्रिप से वापसी पर मुलाजमा ने अशर के किरदार का खुलासा किया तो मैं हैरान रह गई। फौरन सबा को हॉस्टल भेजा। इससे पहले कि मैं अशर से कोई बात करती, उन्होंने मुल्क से बाहर जाने का फरमान सुना दिया और मैं बंद कमरे में अपनी तन्हाई गुजारने लगी। सबा की कमी खुलखलती, मगर उसके अच्छे मुस्तकबिल की खातिर बर्दाश्त कर लिया। अब अचानक सुहेल का उसकी ज़िंदगी में आना और शादी का फैसला। मेरा बेचैन होना फितरी था, मगर उसकी ख्वाहिश और उससे ज़्यादा उसकी ज़िद के आगे मैं मजबूर थी। सुहेल बैंक में मुलाजिम था, 9 से 5 की नौकरी और फिर घर। उसका मुस्तकबिल एक महफूज हाथों में है। मैंने खुद को तसल्ली दी और शादी की तैयारी में जुट गई। पहली बार सबा के घर जाते हुए दिल में वसवसे थे, मगर वहाँ पहुँचकर सब दूर हो गए। सजी सवरी और हैरान कर देने की हद तक सादतमंद बीवी का ये रूप सबा ने कहाँ से इख्तियार किया था, मैं समझ नहीं सकी। सुहेल के खाने, कपड़े, पसंद और नापसंद की लंबी फेरिस उसके होठों पर थी। वो खासी जहीन थी, स्कूल और कॉलेज के उसके बेहतरीन रिकॉर्ड्स थे। सब बहुत कुछ करने की सलाहियत थी उसके अंदर, मगर आज घर की चहारदीवारी में कैद शौहर की टाई और रुमाल का हिसाब रखते हुए क्या वो वाकई खुश हो सकती है या फिर खुश रहने का दिखावा कर रही है? मेरे अंदर की औरत ने मुझे जानने के लिए उकसाया, मगर एक माँ ने उसे खामोश कर दिया। ये मेरा वहम है, मेरी बेटी खुश है, हंसते खिलखिलाते हुए मैंने उसे पहली बार देखा है। रिश्ते शायद ऐसे ही पनपते हैं, अपनी कुर्बानी देकर। दिल में आए खदशात को नकार कर मैं मुतमईन होकर वहाँ से लौटी। अगले साल वो एक बच्ची की माँ बन गई। अब शायद वो मेरी ममता को समझने भी लगी थी और अक्सर खुद फ़ोन करके मुझे समरा के पल पल की खबर देती। फिर अचानक उसके लहजे में एक उलझाव महसूस हुआ। वो कुछ परेशान है। क्यों? मैं उसे फ़ोन करती, सुहेल के बारे में दरियाफ्त करती, मगर वो टाल जाती। कभी उसका फ़ोन बंद होता और कभी एक दो जुमले के बाद वो फ़ोन काट देती। कहीं कोई गड़बड़ है। बहुत देर बाद उसने फ़ोन उठाया। मैं दवा खाकर सो रही थी, मगर क्यों, क्या हुआ है? बगैर जवाब दिए उसने फ़ोन काट दिया। कई दिनों तक कुरेदने के बाद उसने बताया कि वो सुहेल से अलग हो रही है। क्या ये धमाका था मेरे लिए? वो अब भी उतनी ही नादान थी जितनी 2 साल पहले थी। मम्मा घुटन होती है मुझे इस माहौल में ये ज़िंदगी जीते हुए। मैं पढ़ाई पूरी करूँगी और फिर नौकरी। शादी के अंदर रहते हुए भी तुम ये कर सकती हो, मैंने समझाना चाहा। बिल्कुल नहीं, मैं साइकिक हो जाऊंगी या फिर उन औरतों की तरह जो हर वक्त वजीफे पढ़कर खुद पर और चारों तरफ दम करती रहती हैं। मैं खामोश हो गई। समरा सो चुकी थी, सबा जाग रही है, मुझे मालूम है। एक बिस्तर पर लेटे हुए हम एक दूसरे से मीलों दूर थे। बहुत तन्हा है इस वक्त और जानती भी नहीं है कि शादी की हिफाजत गाह से बाहर निकलते ही वो कितनी अकेली हो जाएगी। सुबह की चाय पीते हुए उसे समझाने की आखिरी कोशिश की मैंने, आपने भी तो पापा को छोड़ दिया था। ये अदालत नहीं थी, मगर उसका लहजा वकीलों जैसा था। मैं मजबूर थी, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था। मैं भी मजबूर हूँ, मगर तुम्हारी बच्ची, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे कभी खुद से अलग नहीं करूँगी। अब क्या जताना चाह रही है वो? मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे गलत ठहरा कर क्या साबित करना चाहती है? मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अलग हुई थी तुम्हारे पापा से, नया घर भी बसाया था आपने। बेटी के सामने अपना दफा करते हुए मैं खुद को बौना महसूस कर रही थी। वो भी ज़रूरत के तहत अकेले ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है, मगर मैं किसी के लिए अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं। सबा की बात किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। मेरी नज़रें झुक गईं। क्या मैं वाकई हार गई? दुनिया की नज़रों में एक कामयाब और पुरएतमाद औरत होते हुए भी मैं एक टूटी हुई डाली की तरह झूल रही थी। बहुत सी आवाज़ें मेरा पीछा कर रही थीं, जैसी माँ वैसी बेटी। काश सबा मुझे गलत ठहराने के लिए इतना बड़ा कदम ना उठाए। मगर ये भी सच है कि सबा के लिए मेरा वजूद कभी किसी अहमियत का हामिल नहीं रहा। वो एक हारी हुई माँ है, एक ऐसी माँ जो अपनी शर्तों पर ज़िंदगी गुजारने के बावजूद अपनी बेटी से ये नहीं कह सकती कि देखो, मैं भी एक घुटन भरे रिश्ते से आज़ाद होकर एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तुम भी ज़रूर खुश रहोगी।
1: सामीन, अभी आप गज़ाला कमर से उनका अफसाना सुन रहे थे। अफसाने का उनवान था दरार। आइए सामीन, अनीता गोस्वामी की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है फैज़ अहमद फैज़ का।

0: आमीन। अभी आप अनीता गोस्वामी की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था फैज़ अहमद फैज़ का। सामीन, शायरी ज़िंदगी का आईना है, अदब का एक नहायत अहम हिस्सा है। शायर अपनी शायरी से न सिर्फ अपने जज्बात और एहसासात की अक्कासी करता है, बल्कि माशरती मसाइल को भी सामने लाता है और लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो आइए सामीन, प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब जावेद मुशीरी से उनका कलाम सुनते हैं।
1: शेर समात फरमाएं।

और शेर समाज फरमाए, तो किस उम्मीद पर कहते कि हम तुम्हारे हैं।

प्यासे की तलब और है सहरा की तलब और, प्यासे की तलब और है सहरा की तलब और। और ये शेर भी समात फरमाए, ये रूह का जिंदा है जिसे उम्र कहें हम,

0: अदना की तलब और है, आला की तलब और।
1: सामीन, अभी आप प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब जावेद मुशीरी से उनका कलाम सुन रहे थे। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिश। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।

印度这里广播电台，现在我们播送外国这部电影的歌曲。

印度德里广播电台，听众朋友们，现在我们播送《曼哈尔》Sukhvinder Kavita 唱的歌曲。

度德里广播电台。听众朋友们，请收听 Mahendra Kapoor 和 Suresh 唱的歌曲。

0: इंदु।
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं आपके मनभावन खेल कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में, खेल से जुड़ी तमाम खबरों के साथ और खास बातचीत के साथ और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के ताजा अपडेट के साथ। और मेरे साथ हैं अभिषेक कपिल।
3: नमस्ते श्रोताओं।
2: और अभिषेक, आज जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है वहां शानदार प्रदर्शन चल रहा है भारतीयों का, और मुक्केबाजों की अगर खासतौर पर बात करें तो अभी जो ताजा अपडेट बिल्कुल एकदम जो नई खबर खुशखबरी है वो ये है कि साक्षी चौधरी ने 51 किलो भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत का मुक्केबाजी में पांचवां पदक तय कर लिया है। शॉटपुट में तेजिंद्रपाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। इसके अलावा पूरी रिपोर्ट और खास बातचीत भी आपको सुनाएंगे और ताजा अपडेट जो होगा वो भी हम उससे आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा बात होगी श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज 2 मैचों की होनी है उसमें भारतीय टीम का चयन हुआ है, कैसी संभावनाएं हैं, क्या है टीम, क्या है किसको मौका मिला है, और इस पर तमाम चर्चा होगी। एशियाड होने हैं इस साल और वहां हॉकी टीम से बड़ी उम्मीदें हैं कि हॉकी टीम अब शानदार प्रदर्शन करेगी और उसके लिए टीम घोषित हो चुकी है। डूरंट कप है, इसके अलावा दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रही है, उस पर खास रिपोर्ट है अभिषेक कपिल की। अंडर 17 विश्व कुश्ती है, इसके अलावा भी तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं। इसकी ताजा पदक तालिका से भी आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल पेश है ये खबर।
4: कॉमनवेल्थ गेम्स।
2: ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय तिरंगा पूरी शान से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर बीतते दिन के साथ भारतीय खिलाड़ी अपने जज्बे जुनून का ऐसा परिचय दे रहे हैं कि पदकों की चमक में भारत का दमदार प्रदर्शन साफ नजर आ रहा है। वेटलिफ्टिंग से लेकर एथलेटिक्स, मुक्केबाजी से लेकर अन्य स्पर्धाओं तक भारतीय खिलाड़ियों ने न सिर्फ पोडियम पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है बल्कि यह भी साबित किया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत अब केवल भाग लेने नहीं बल्कि दबदबा बनाने उतरता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जब केवल 10 खेलों को ही शामिल किया गया तो पदक दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी उन खेलों और खिलाड़ियों पर भी आ गई थी जो पहले भी देश का मान बढ़ा चुके हैं। 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का भार उठाए वेटलिफ्टरों ने पदक दिलाने की जिम्मेदारी को बखूबी उठा रखा है। भारत के पदकों की संख्या 2 अंकों में पहुंच चुकी है। 12 में से 7 पदक वेटलिफ्टरों की झोली में आए हैं जिनमें गोल्डन हैट्रिक यानी स्वर्ण पदकों की तिकड़ी लगाने वाली मीराबाई चानू से लेकर रजत पदक जीतने वाली हरजिंदर कौर शामिल हैं। भारत के जीते 12 पदकों में से 6 महिलाओं ने दिलाए हैं, यानी भारतीय नारी शक्ति की भी जय जयकार हो रही है। पदकों की संख्या में और बढ़ोतरी होना तय है क्योंकि भारत के 4 मुक्केबाज सेमीफाइनल में जगह बनाकर पदक पक्का कर चुके हैं। वेटलिफ्टिंग में महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग में हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम वजन उठाया जिसमें स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम शामिल है। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा। हालांकि 63 भार वर्ग में निरुपमा देवी पदक नहीं जीत सकी और तीनों प्रयास विफल रहने के बाद नो लिफ्ट के साथ उनका अभियान समाप्त हो गया। वेटलिफ्टिंग में केवल निरुपमा ही ऐसी भारतीय खिलाड़ी रही जो पोडियम फिनिश नहीं कर सकी। हरजिंदर कौर का रजत भारतीय वेटलिफ्टरों का 3रा सिल्वर मेडल रहा।

0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह, वल्लूरी अजय बाबू भी दूसरे स्थान पर रहकर पोडियम फिनिश कर चुके हैं, जबकि विंध्या रानी देवी ने कांस्य पदक जीता था। लगता है वेटलिफ्टरों और ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ियों के बीच एक स्वस्थ होड़ चल रही है कि भारत को कौन ज्यादा पदक दिलाता है। 10,000 मीटर की रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुलबीर सिंह ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में 10,000 मीटर की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
1: अच्छा हुआ क्योंकि हमारे देश के लिए मेडल आया है, क्योंकि जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा अच्छा हो गया, उसको खुशी है कि और जितने भी हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही है अच्छा लग रहा था। कॉन्फिडेंस तो ये है कि जितना सर हम जितना बाहर के जितने एथलीट हैं उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं तो उसके बाद क्या क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो अंदर की है ना, हम इनके साथ कैसे दौड़ेंगे, क्या हम क्या हुआ, बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं तो हमारे अंदर की जो फीलिंग है ना वो निकल जाती है, क्योंकि हम ये लगता है हम मेडल जीते किस हिसाब से वो।
0: गुलबीर ने 27:49.78 का समय निकाला। स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के रॉबिन्सन और कांस्य पदक आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारकी ने जीता। लगातार बारिश के बीच गुलबीर शुरुआत से ही उस लीड करने वाले एथलीटों के साथ बने रहे। अंतिम टीम लैप में उन्होंने गति बढ़ाई। कड़े दबाव के बीच गुलबीर ने दूसरा स्थान सुरक्षित रखा। यह ट्रैक एंड फील्ड में भारत का दूसरा पदक रहा। इससे पहले सर्वेश कुशारे ने ऊंची कूद में रजत पदक दिलाया था। महिलाओं की ऊंची कूद में एशियाई चैंपियन पूजा सिंह 1.82 मीटर की ऊंचाई पार करने में असफल रही और पदक की दौड़ से बाहर हो गयी। मुक्केबाजी के रिंग में भी पदक पक्के हो रहे हैं, बस पदक का रंग तय होना बाकी है। महिलाओं में लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही पदक पक्का कर लिया है। उसके बाद प्रीति पवार, प्रिया घंगास और जादूमणि सिंह ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रवीण हुड्डा और कपिल पोखरिया अंतिम 8 के मुकाबलों में हार कर जरूर बाहर हो गए हैं। महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता प्रीति ने उत्तरी आयरलैंड की निकोल क्लाइड को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। वहीं महिलाओं के 60 भार वर्ग में प्रिया ने स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 से पराजित किया। पुरुषों के 55 भार वर्ग में जादूमणि सिंह ने जाम्बिया के मवेंगो मवाले को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। जादूमणि ने अपने प्रतिद्वंदी को लय हासिल नहीं करने दी और ताबड़तोड़ मुक्कों से उन्हें पस्त कर दिया। जाम्बिया के मवाले तो बस पंच से बचते ही नजर आए। प्रवीण हुड्डा को इंग्लैंड की साशा हिक्की से 2-3 के कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया का राष्ट्रमंडल खेलों में अभियान क्वार्टर फाइनल में थम गया। उन्हें 90 भार वर्ग में रॉबर्ट मैकेल्टिन ने हराया। तैराकी में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और श्रीहरि नटराज 100 मीटर बैकस्ट्रोक के फाइनल में नहीं पहुंच सके। पैरा तैराकी में RVV BK बुद्धिगना और अली इमाम भी पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में पदक की दौड़ में पिछड़ गए। आज होने वाले भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबलों की बात करें तो तेजेंद्र पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गोला फेंक में उतरेंगे। पुरुष लंबी कूद के फाइनल में मुरली श्रीडंकर और लोकेश सत्यनाथन पदक की रेस में शामिल होंगे। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में यशास पलाक्षा और संतोष कुमार तमिल रासन हीट्स में उतरेंगे। महिला गोला फेंक में मनप्रीत कौर और पारुल चौधरी 3,000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में देर रात उतरेंगी। पैरा एथलेटिक्स में पुरुष चक्का फेंक में F42-44 में और AF61-64 फाइनल में देवेंद्र कुमार और सागर थयाल से भी उम्मीद रहेंगी। पुरुषों के 100 मीटर T47 फाइनल में मोहम्मद बासिल, मॉर्सिगन काथ और दिलीप महादू छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। जहां तक बात मुक्केबाजी की है तो महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में साक्षी, अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया अपने अपने भार वर्ग सेमीफाइनल में पहुंचने का लक्ष्य लेकर रिंग में उतरेंगी। पुरुष वर्ग में सचिन सिवास, अंकुश यादव, नरेंद्र भरवाल भी क्वार्टर फाइनल जीतकर पदक पक्का करना चाहेंगे। कल भाला फेंक में भारत के स्टार एथलीट दोहरे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा पर निगाहें रहेंगी। The Commonwealth Games। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे हमने जिक्र किया कि आज जो मुकाबले हैं उनमें जो मुक्केबाजों पर नजर है और अच्छी खबर ये है, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत की मुक्केबाज साक्षी ने पदक पक्का कर लिया है, वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जो 51 भार वर्ग में महिला मुक्केबाजी में चल रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में, वहां उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की कैटलिन फ्रायर्स को 5-0 से पराजित किया और सभी 5 जजों के जो निर्णय है उनके पक्ष में रहा। इसके अलावा 70 भार वर्ग में अभी मुकाबला चल रहा है जहां भारत की अरुंधति चौधरी न्यूजीलैंड की हेंडरसन के खिलाफ वो मुकाबला खेल रही हैं। इसमें जैसे ही अपडेट आता है हम आपको अवगत कराते हैं। और अन्य स्पर्धों की

0: बात करें, जैसे तजेंद्र पाल सिंह टूर पर निगाहें हैं, दो बार के एशियाई खेलों के चैंपियन हैं तजेंद्र पाल सिंह टूर, और उनके साथी हैं समरदीप, दोनों ने एक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शॉट पुट में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तजेंद्र पाल सिंह टूर ने दो प्रयासों में ही ग्रुप ए से 20 मीटर का स्वतः क्वालिफिकेशन मार्क हासिल कर लिया। उनका पहला प्रयास 19.93 मीटर का था और दूसरा प्रयास 20.14 मीटर का। उन्होंने तीसरा प्रयास नहीं किया। ग्रुप बी से गिल का सर्वश्रेष्ठ जो प्रयास था वो पहले ही था, उन्होंने 19.95 मीटर का थ्रो फेंका, दूसरा थ्रो 19.75 मीटर का और तीसरा फाउल रहा। वह 15 खिलाड़ियों में समरदीप कुल पांचवें स्थान पर है। ग्रुप ए से 7 और बी में 8 प्रतियोगी थे। 20 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले या सर्वश्रेष्ठ 12 को बृहस्पतिवार को होने वाले फाइनल में जगह मिली है। न्यूजीलैंड के टॉम वॉल्श ने 21.03 का थ्रू लगाकर पहला स्थान हासिल किया। टूर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21.03 मीटर का है, जबकि उनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर का है, जो उन्होंने 2023 में बनाया था। पिछले दो एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टूर दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे हैं। वे 2018 में गोल्ड कोस्ट में 8वें स्थान पर थे, जबकि पिछली बार चोट के कारण उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य जो स्पर्धाएं हैं और उसमें ताजा अपडेट की बात की जाए, तो वेटलिफ्टिंग में हालांकि अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन अभी जो ताजा रिपोर्ट है वहां भारतीय भारोत्तोलक संजना राष्ट्रमंडल खेलों की महिलाओं की 77 किलो भार वर्ग में बाहर हो गई हैं। स्नेच में उनकी तीनों प्रयास विफल रहे। 19 वर्ष की संजना 94 किलो का लक्ष्य तीनों प्रयास में हासिल नहीं कर सकी, जिससे क्लीन एंड जर्क के पहले ही उनकी चुनौती समाप्त हो गई। स्नेच में एक भी लिफ्ट वैध नहीं होने के कारण वे क्लीन एंड जर्क में भाग नहीं ले सकती थी। इससे पहले महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में निरुपमा देवी के नाम के आगे भी डिड नॉट फिनिश, मुकाबला पूरा नहीं कर सकी थी, और वे क्लीन एंड जर्क में तीनों प्रयासों में नाकाम रही, जबकि स्नेच में उन्होंने 93 किलो वजन उठाया था। संजना ने प्रतिस्पर्धा में स्नेच में 94 और क्लीन एंड जर्क में 182 किलो का लक्ष्य रखा था। तो दोस्तों ये तो बात हुई अभी ताजा अपडेट की, और जो अपडेट हमें मिलती है उस पर हम आपको अवगत कराते हैं। लेकिन अभी जब जो प्रदर्शन रहा आज के मुकाबले शुरू होने से पहले भारतीय जो प्रदर्शन रहा उस पर हमने खास बातचीत की खेल पत्रकार मोना पार्थार्थी से, तो भारतीय प्रदर्शन पर उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं।
1: भारत की टीम गई थी तभी माना जा रहा था कि वो प्रबल दावेदारों में से होंगे और 10,000 मीटर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। और आपने अगर उनकी रेस देखी हो तो आखिरी लैप में जिस तरह उन्होंने जबरदस्त तेजी दिखाते हुए बहुत कम समय निकाला और वहीं से वो दूसरे स्थान पर आ गए थे, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है और एशियाई खेलों से पहले जरूर भारत का मनोबल काफी बड़ा होगा।
2: जो राष्ट्रमंडल खेल है वहाँ एक कड़ा कंपटीशन होता है ट्रैक एंड फील्ड में, और जैसे आपने कहा कि आप रेस में एक बड़ा कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और बारिश भी हो रही थी और उसके बीच में मौसम भी एक चैलेंज है, तो वहां भी उन्होंने चुनौतियों से पार पाया।
1: एक्चुअली जब इन लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है वो भी इतनी अच्छी व्यवस्थित हुई है कि हर तरह की परिस्थिति के लिए अब इनको ट्रेन किया जाता है, तो यहाँ सारी कठिन प्रतिस्पर्धा थी, मौसम खराब था, लेकिन स्टेमिना और एंड्योरेंस का खेल होता है सारा, और वहां पर गुलवीर ने काफी अच्छा प्रदर्शन होता रहा।
2: अगर वेटलिफ्टिंग की बात करें तो वहां भी एक वेटलिफ्टर भी अच्छे पदक दिला रहे हैं, 7 पदक अब तक दिला चुके हैं, और गोल्ड की बात करें तो भारतीय महिलाएं भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, दोनों गोल्ड मीराबाई और शर्मिला ने दिलाए हैं।
1: जी बिल्कुल, भारोत्तोलन में मीराबाई चानू की खास तौर पर यहाँ तारीफ करनी होगी क्योंकि उनकी हैट्रिक है। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में गोल्ड मेडल जीता था, बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता था और यहाँ उस प्रदर्शन को दोहराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंधे की बहुत ही गंभीर चोट से उबरने के बाद उन्होंने वापसी की है। उस चोट की वजह से वो एशियाई चैंपियनशिप नहीं खेल पाई थी और ग्लासगो, क्योंकि 2014 में ग्लासगो में ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का पहली बार सबूत दिया था और वहां से ओलंपिक में जो उनका प्रदर्शन रहा वहां टोक्यो में उन्होंने रजत पदक जीता और उसके बाद लगातार अच्छा कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं वो उनके प्रदर्शन में नजर आती है। और यहाँ भी पहले दोनों स्नैच और क्लीन एंड जर्क में पहले दोनों लिफ्ट उनके क्लीन नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से वजन उठाया वाकई में 190 किलो कुल वजन, और जो दूसरे स्थान पर रही वो 168 किलो वजन था, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना गैप था पहले और दूसरे स्थान के बीच में। तो मीराबाई से जो उम्मीद की गई थी वो उस पर अब बिल्कुल खरी उतरी।
2: बिल्कुल 16 आने खरी उतरी हैं, लेकिन अभी ये जो वेट लिफ्टिंग में जो परफॉर्मेंस

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: रास्ता दिखाया। जब उन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की बात आई थी तो वेद व्यास जी उनसे मिले। हमारे गुरुओं की जो एक परंपरा है वह मात्र अध्ययन कराने से ही गुरु नहीं होता है, गुरु अपने आचरण से होता है। यदि गुरु का आचरण बहुत सभ्य है, गुरु का आचरण आदरणीय है, गुरु का आचरण पूजनीय है, तो आचरण की जो एक शिक्षा समाज में जाती है वह सबसे बड़ी शिक्षा है। आचरण से ही ज्ञान दिया जाता है। भारतीय परंपरा में गुरुओं की स्थिति बहुत ही उन्नत है। हमारे यहाँ तक कहा गया है, बट तरोर मूरे विद्या शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्या छिन संशया। एक बट वृक्ष के नीचे गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं, उसमें उनका गुरु जो है युवा है और जो शिष्य है वो वृद्ध हैं, परंतु गुरु का जो व्याख्यान हो रहा है वो मौन है, मौन व्याख्यान दे रहे हैं, परंतु उस मौन व्याख्यान में भी जो उनके शिष्य हैं उनका सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और व्याख्यान मौन चल रहा है। ये भारतीय परंपरा का गुरु है जो मौन होते हुए भी अपने शिष्यों को बहुत बड़ी शिक्षा देता है। वह शिष्य अपने ज्ञान में मुक्त हो जाते हैं। तो अगर जिस दिन गुरु चाह ले, जिस दिन गुरु की व्यवस्था बन जाए, तो अपने शिष्य को बहुत ही उन्नत स्थिति पर वह पहुंचाता है।
1: आपसे हमने ये जाना कि अगर श्रद्धा हो, लग्न हो और परिश्रम किया जाए, साधना की जाए, तो स्वयं वेद व्यास जी के दर्शन भी पाए जा सकते हैं, जो कि गुरुओं के गुरु हैं, और अपने गुरुओं का मान तो हमेशा रखना ही चाहिए। गुरु से ज्ञान पाने की बहुत सारी विधियां होती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो विद्यालय शिक्षा में हमारे शिक्षक होते हैं वही गुरु हैं, क्या शाब्दिक अर्थ को छोड़े तो इनमें कोई भिन्नता है, कोई भेद है?
0: गुरु की जहाँ तक दृष्टि आती है, सबसे पहला गुरु माँ को कहा गया है, क्योंकि माँ सबसे प्रथम गुरु है। बच्चा जब पालने में होता है, बच्चा माँ की गोदी में होता है, तो वहां से ही माँ बच्चे को धीरे धीरे धीरे धीरे उसको शिक्षा देना प्रारंभ करती है। उसके बाद पिता उसका गुरु होता है, वह भी उसको शिक्षा देता है, परंतु जब माता और पिता के बाद उसको कुछ और शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, समाज की दृष्टि की आवश्यकता होती है, और माँ पिता से हट करके उसको जब शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, गुरुकुल में भेजा जाता है। उसी प्रकार आज हम माता पिता अपने बच्चे को किसी विद्यालय में उसको अध्ययन के लिए भेजते हैं, वहां पर उसका जो गुरु है वो उसके अध्ययन को आगे बढ़ाता है, उसको जो शिक्षा देता है, उसको अक्षर ज्ञान देता है, और उसके बाद धीरे धीरे धीरे वो उसके चरित्र का निर्माण करता है। आप देखिए, एक गुरु के पास बहुत से शिष्य होते हैं, एक कक्षा में बहुत से छात्र होते हैं, परंतु उन सभी छात्रों को एक ही अध्यापक या एक ही गुरु उनको पढ़ाता है। उसमें से बहुत ही कम शिष्य ऐसे होते हैं जो उस गुरु की बात को सुन करके, उस गुरु की बात को मान करके वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं और शिखर तक पहुंचते हैं। शिष्य और गुरु का एक तादात्म्य संबंध होता है, वह संबंध सिर्फ भौतिक संबंध नहीं होता है। तो तादात्म्य संबंध का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, जहाँ पर गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है समाज के लिए। और आज के संदर्भ में मैं मानता हूँ कि आज ऐसे गुरुओं की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो आचरण से पवित्र हों, ज्ञान से पूर्ण हों, और जो सामाजिक व्यवहार को बच्चों को दें। तो आज भी ऐसे गुरुओं की आवश्यकता है, और ऐसे गुरु जब तक समाज में रहेंगे, धीरे धीरे समाज उन्नति की ओर चलता चला जाएगा।
1: हम मानते हैं कि ज्ञान में पात्रता जो है उसका बहुत महत्व है। शिक्षा अर्जित करने के लिए तो पात्रता पर हमेशा ही ध्यान दिया जाता है कि जो शिष्य है वो कैसे हैं, लेकिन क्या हम गुरु की पात्रता पर भी विचार कर सकते हैं, किन्हें अपना गुरु मानना चाहिए?
0: पात्रता ज्ञान में है, परंतु उसके जो गुण हैं, आचार्य के, गुरु के जो गुण होने चाहिए, वो ज्ञान की गंभीरता के बजाय यदि उसके आचरण के और उसके गुण यदि ज्यादा अच्छे हैं, तो ज्ञान धीरे धीरे वो आ जाएगा। ज्ञान एक ऐसी चीज है, वो हर व्यक्ति में होता है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा बिंदु है, अर्थात ज्ञान का दूसरा रूप वेद भी है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका जो अधिकरण है, ज्ञान हमेशा आत्म तत्व में रहता है और आत्म तत्व शरीर में रहता है, तो ज्ञान सभी व्यक्तियों में बराबर होता है। अंतर इतना होता है कि कोई जो ज्ञानी है या जो गुरु है या जो शिष्य है, उन दोनों में धीरे धीरे धीरे धीरे जो सामिप्य बनता है, आपस का जो झिझक है, आपस की जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे जब हटती हैं, तो गुरु और शिष्य का एकाकार हो जाता है। जब वो एकाकार होने लगता है, तो शिष्य अपने गुरु के पास जब जैसे जैसे एक पुत्र अपने माँ से बहुत करीब होता है, अगर उसी प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के बहुत करीब हो जाता है, तो कभी बहुत दृष्टि से गुरु का जो ज्ञान है वो शिष्य में अपने आप संप्रेरित हो जाता है, और उस संप्रेरित हो जाने के कारण शिष्य भी वहां पर जो कम से कम जानने वाला

0: शिष्य अगर हम यहां कहें बोलने लग जाता है सिर्फ गुरु की कृपा से। ये सामान्यतया हम आज की दृष्टि से इसको कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, परंतु जो एक प्रकार के जो सिद्ध गुरु हैं या जिन गुरु में जिनका गुण बहुत ज्यादा है, ऐसे गुणी जो गुरु हैं जिनमें गुण संपन्नता आचरण संपन्नता बहुत रहती है, उन गुरुओं के द्वारा ज्ञान का संप्रेषण छात्रों में सबसे अधिक होता है। तो जहां गुरु के पास शिक्षा का नॉलेज होना चाहिए, जिसको आज नॉलेज कहते हैं, ज्ञान होना चाहिए, वो बहुत कुछ जानता है, वो भी उसके पास होने चाहिए, परंतु यदि उसमें गुण नहीं है और गुरु का जो गुण होने चाहिए, गुरु के अंदर जो आवश्यकताएं होनी चाहिए, यदि वो चीजें उसमें नहीं है तो उसके ज्ञान का संप्रेषण कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, रावण को वेद का ज्ञान था, रावण को बहुत से शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी रावण गुरु नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? रावण का जो आचरण था वो उसके अनुकूल नहीं था। रावण का आचरण उसके अनुकूल न होने के, तो आचरण का मुख्य उद्देश्य आचरण होता है, गुण होते हैं। यदि उसके गुण, उसका आचरण, उसका जो पूरा एक समग्र औरा जो होता है, यदि उसका उस छात्र के अनुकूल है या उस शिष्य के अनुकूल है, तो शिष्य हमेशा ज्ञान में परिपूर्ण होगा ही। बहुत से किस्म के शिष्य होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ने से दूर जाते हैं, पर जिस दिन यदि गुरु चाह लेगा कि मुझे इस शिष्य को ठीक करना है, तो उस दिन वह शिष्य निश्चित रूप में ठीक होगा, क्योंकि गुरु के पास ही वह गुण है और वह गुरु ही जानता है कि मुझे इसे ठीक कैसे करना है।
1: जी,
0: कभी कभी समाज की ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत से अच्छे गुरु भी इस प्रक्रिया में आगे नहीं आ पाते, और वो आगे नहीं आ पाने के कारण वो ये चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। आदिकाल में क्या था, गुरु के आश्रम में शिष्य रहता था, आश्रम में शिष्य रहने के कारण गुरु वहां पर स्वतंत्र होता था अपने शिष्यों को ठीक से व्यवस्थित करने की दृष्टि से। वो धीरे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, बहुत से शिष्य ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो लर्नर आज हम उसको कहते हैं, तो स्लो चलना तीव्र चलना, परंतु अगर गुरु चाहे तो उसको ठीक कर सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य के संदर्भ में एक बहुत अच्छा ऐसा ही उपाख्यान आता है कि उनके चार शिष्य थे, चार शिष्यों में सारे शिष्य प्रख्यात थे, बहुत अच्छे ज्ञानवान थे, विद्वान थे। उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी हमको पाठ पढ़ाइए, हमको पढ़ना है। तो उनका एक शिष्य जो है कोई काम से, उनकी सेवा के काम से तालाब के पास गया था और उनका वस्त्र प्रक्षालन कर रहा था। उनने कहा उनकी उसको भी आने दो, फिर पाठ शुरू करते हैं। अन्य शिष्यों ने कहा नहीं, उसको आना ना आना बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं है, कुछ समझता नहीं बात को। परंतु गुरु को ये बात बहुत बुरी लगी। उनने कहा मेरा एक शिष्य है, बहुत अच्छा है, सेवा करता है, सब कुछ करता है, परंतु उसमें ज्ञान का वो संप्रेषण बहुत जल्दी नहीं होता है। ये तीन जो शेष हैं, इन्होंने सोचा कि हम तो बहुत विद्वान हैं, तो हम शायद ऐसा अहंकार आ गया है कि उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये गुरु को जब बात खराब लगी तो उन्होंने तुरंत, जैसे वो शिष्य आया, उनने पूछा तुम कहाँ थे? इतने देरी में गुरु ने अपना पूरा ज्ञान उसको दे दिया, और देने के बाद उसे पूछा तुम कहाँ थे, तो उसने कहा कि हम ऐसे ऐसे, और वो सारी विद्या जो सारी चीजें उसने अपने त्रोटक छंद में बताई और बाद में आकर के वही त्रोटकाचार्य हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यदि व्यक्ति को कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो निश्चित है कि उसके जीवन का कल्याण होगा, उसका उद्धार होगा और वो अपने उद्देश्य में सफल होगा।
1: और अच्छे गुरु की बात आपने कही, तो भारतीय दर्शन में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, या ईश्वर के समकक्ष तो माना ही गया है।
0: बिल्कुल ठीक।
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ऐसा केवल श्रद्धावश कहा जाता है या इसका दार्शनिक आधार
0: भी? नहीं, इसका दार्शनिक आधार भी है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है और इसका मनोवैज्ञानिक भी है। कहा गया है, गुरु गोविंद दोऊं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। भी सामान्य बात है कि एक व्यक्ति है, वो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को कुछ पता नहीं है, बच्चा पैदा होते ही जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो पूछता है कि मुझे क्या करना है, अपनी माँ से कई बार लड़ता है। अगर उसकी माँ ही उसको ठीक रास्ते पे पहुंचा दे तो माँ ही गुरु हो जाती। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन माताओं ने अपने बच्चों को ऐसी रास्ता दिखा करके बहुत महान ऋषि बनाया। जब वो गुरु के पास जाते तो रास्ता कौन सही है? ईश्वर का अभिप्राय है कि जो उन्नत, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी स्थिति जहां उन्नत की स्थिति है, जहां पर जाकर के सभी ऐश्वर्य मिल जाते हैं, उस ऐश्वर्यवान व्यक्ति के पास तक जाने के लिए रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता दिखाने वाला गुरु ही है। तो जब गुरु रास्ता दिखाएगा तो व्यक्ति ईश्वर से भी मिल सकता है। गुरु रास्ता दिखाएगा तो व्यक्ति धीरे धीरे एक सामान्य अन्य स्थिति जिसको कुछ

0: नहीं समझ में आता था उसको भी गुरु कहां से कहां पहुंचा सकता है। आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कहां था, चंद्रगुप्त मौर्य को कहां से प्राप्त किया चाणक्य ने, और उस चाणक्य ने उसको सम्राट बनाया। तो ये गुरु का ही प्रताप है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य ही सबसे बड़े ईश्वर हैं। इसलिए जब अपने जीवन में कोई व्यक्ति सफल होता है, जब अपने जीवन में परम तत्व पर पहुंचता है, तो उसके लिए उस तत्व तक पहुंचाने वाला एक ही व्यक्ति है, और वह है गुरु। इसलिए वो व्यक्ति अपने गुरु को ही परम ईश्वर मानेगा, वो अपने गुरु के सिवा दूसरे को ईश्वर नहीं मानेगा। इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि यहां तक पहुंचाने वाला उसका ही गुरु है। तो इसीलिए गुरु का महत्व सबसे बड़ा है। दूसरी बात है कि विज्ञान की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यही एक तारतम्य होता है कि जब गुरु और शिष्य के बीच का जब अंतर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तो गुरु भी खुल करके अपने शिष्य से अपनी बात बताता है। शिष्य भी और गुरु भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान जब उन निसंकोच होने लगता है, तो धीरे धीरे ज्ञान का संप्रेषण होता है, आचरण से, व्यवहार से, मानसिक स्थितियों से, तो एक दूसरे में उनका ज्ञान भी ट्रांसफर होता चला जाता है। और ये धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती हैं, ये बहुत माइन्यूट स्तर पर जाकर के बातें बनती हैं। आज के दृष्टि से, भौतिक प्रयोगशालाओं की दृष्टि से अगर हम इस बात को समझना चाहेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, परंतु जब हम बहुत माइन्यूट लेवल पे जाकर के परा मेटा लेवल्स के विज्ञान के भी मेटाफिजिक्स के लेवल, किसी ज्ञान के उस परम तत्व के लेवल पर अगर हम जाएंगे, तो ज्ञान हमको गुरु से ही मिल सकता है और वह गुरु हमको अपने उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। इसीलिए गुरु को परम तत्व कहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी अगर व्यक्ति अपने मन में अपने गुरु का ध्यान कर ले और उसको पता है कि मेरा ये गुरु है और मुझे इससे ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो गुरु के पास भौतिक रूप में न जा करके भी अपनी साधना के द्वारा, अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने गुरु के पास का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही ज्ञान प्राप्त किया था एकलव्य ने। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी। मूर्ति बनाने के बाद जब एकलव्य को पूछा गया कि तुमने ज्ञान किससे प्राप्त किया, तुमने मैंने गुरु द्रोणाचार्य से किया, गुरु द्रोणाचार्य ने उसको भौतिक रूप में ज्ञान नहीं दिया, किस रूप में दिया। इसलिए गुरु का जो गुरु तत्व है, गुरु तत्व जो है वो हर व्यक्ति के अंदर है। वो जो गुरु तत्व है, यदि गुरु में वो गुरु तत्व है, गुरुत्व है, अगर वो बात है तो वो अपने शिष्य तक पहुंचा लेगा। परंतु यदि योग्य शिष्य है और शिष्य में यदि ये गंभीरता है, तो वो गुरु का वो ज्ञान को भी प्राप्त कर लेगा। दोनों में ये बात आती है, गुरु चाहे तो अपने शिष्य को वह ज्ञान दे सकता है, परंतु अगर शिष्य भी चाहे तो उस गुरु से पूरा का पूरा ज्ञान ले सकता है।
1: बहुत ही सुंदर बात आपने बताई उदाहरण के साथ भी। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज के डिजिटल युग में जब हम कहते हैं कि हमारे हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में हमारे हर सवाल का जवाब है, AI जो है तुरंत वो समाधान करती है समस्याओं का, ऐसे में पारंपरिक गुरु की भूमिका के बारे में क्या प्रासंगिकता है?
0: देखिए, जहाँ तक AI की बात है, जहाँ तक डिजिटल की बात है, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम हमारे पास उस लॉजिक पर चल रहा है जिस लॉजिक पर हमने सारा का सारा ज्ञान उसको इनपुट कर रखा है, डाल रखा है और डिजिटल लेवल पे कहीं वो एक जगह भंडारित हो रखा। उस भंडारित ज्ञान में से हमने उसको एक प्रश्न पूछा तो उसने क्या किया कि वहां से उसमें से टटोल करके जितना उसको समझ में आया उसने उठा के आपको दे दिया, जैसे आपकी आपकी ChatGPT है या AI के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान है। परंतु किसी न किसी के द्वारा तो वह ज्ञान एक जगह रखा गया है,
1: बिल्कुल
0: वहीं से वो इकट्ठा करके लाएगा। यदि मेरी लाइब्रेरी में कोई पुस्तक है तो तभी वो पुस्तक मुझे मिल पाएगी, क्योंकि वो पुस्तक मेरी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। जो ज्ञान मुझे आज AI या लोग सोचते हैं यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, यदि मेरे AI में या मेरे उस भंडार में वो चीज है तभी मिल पाएगी, यदि उसमें नहीं है तो कहाँ से मिलेगी। परंतु जो वास्तविक गुरु है, उसके पास जो गुरु का गुरुत्व है, जो उसमें मूल रूप में गुरु है, उसने ज्ञान को कैसे प्राप्त किया, वो तो सजीव है ना
1: जी।
0: और वो एक प्रकार का हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम को हमने ऐसा बना रखा है, वहां पर नॉलेज है। आज हमारी लाइब्रेरी भौतिक रूप में नहीं होकर के इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, तो उसके द्वारा ज्ञान को लेना, लाइब्रेरी से ज्ञान को लेना, परंतु गुरु से ज्ञान को लेने में बहुत बड़ा अंतर है। ये इतना बड़ा अंतर है कि गुरु, मैंने आपको कहा कि जैसे वो अपने ज्ञान को पूरा का पूरा संप्रेषित कर सकता है, ऐसे इंटरनेट से ज्ञान को लेकर के हमारी उसमें नहीं आ सकता है। गुरु का जो महत्व है वो किसी भी स्थिति में कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। और अच्छे शिष्य को अगर कोई गुरु वास्तविक रूप में उसका कोई गुरु, जो जिसको हम ऑफलाइन गुरु जिसको कहते हैं, अगर उसको कोई ऑफलाइन गुरु मिलता है तो

0: वही उसका सही प्रश्नों का जवाब दे सकता है। बहुत से गुरु ऐसे हो सकते, ठीक, इंटरनेट ये आवश्यक है जीवन में, ये आपके ज्ञान को संपुष्ट करने के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छे हैं। जो ज्ञान गुरु ने आपको बताया उसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए या उस लेवल पे दुनिया क्या क्या सोच रही है उसको जानने के लिए ये डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा है। परंतु हम ये माने कि डिजिटल मीडिया ही सब कुछ है और इसके द्वारा ही हम पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा ज्ञान के संप्रेषण के लिए, आने वाली शिक्षा के लिए, देने वाले शिक्षक। अच्छा शिष्य कार्यकर्ता या अच्छा व्यक्ति तभी बन सकता है जब वो एक अच्छे गुरु के पास हो
1: जी।
0: ये नहीं बन सकता कि वो एक अच्छे, उसके पास बहुत अच्छा डाटा बैंक है, उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, उसके पास बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा होगा। इससे सहमत नहीं हूं और मैं कहता हूं कि ये संभव भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमको जो अभी मिल रहा है वो अभौतिक है और जो हमारे पास ये सारी चीजें ये भौतिक है। ज्ञान इतना ही नहीं है, ज्ञान का जो मूल, ज्ञान का जो आधार है वो आत्म तत्व है। और आत्म तत्व को अगर हम समझते हैं, जैसे मेरा ये जो हार्ड मांस का शरीर है और इसमें मैं रह रहा हूं, तो ज्ञान मैं में है, ज्ञान शरीर में नहीं है
1: जी।
0: तो जो मैं वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, उसमें ज्ञान होता है। वो कैसे रूप में संप्रेषित होता है, आज के विज्ञान की दृष्टि से ये व्यवहार अभी भी हमारा इंस्ट्रूमेंटल नहीं हुआ, और जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंटल हो जाएगा उस दिन लोगों को ठीक समझ में आएगा। इसलिए लोग आज की दृष्टि, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से लोग इतना ही समझते हैं, ज्ञान सिर्फ इतना ही है जो लाइब्रेरियों में है, ज्ञान इतना ही है जो इंटरनेट में है, ज्ञान इतना ही है जो हमको AI बता रहा है, ज्ञान इतना ही है जो हमको कंप्यूटर बता रहा है। इस सब को पूर्ण करने के बाद भी जो बचता है वही ज्ञान है और वो गुरु ही दे सकता है।
1: बिना सीखे हम ये सब भी नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा कि गुरु की जो भूमिका है वो हमेशा रहती है और जितना हम समझते हैं उससे इतर बहुत सारा ज्ञान है जो हमें गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारा जो समाज है उसमें आध्यात्मिक स्तर पर गुरु का जो स्थान है उसे तो अक्षुण्य रखा ही गया है, लेकिन घर परिवारों में अनुष्ठान से जुड़े हुए भी बहुत सारे गुरुजी होते हैं जिन्हें सम्मान दिया जाता है समय समय पर। अगर हम अपने गुरु के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहें गुरु पूर्णिमा में, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: हर परंपरा में अपनी एक व्यवस्थाएं होती
1: जी।
0: हैं। कुछ लोग अपने शिक्षा गुरु के पास जाते हैं
1: जी,
0: उनको अपना जो भी उनका पत्रम पुष्पम फलम तोयम से उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, एक पक्ष ये है। दूसरा ये है कोई दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु का भारतीय परंपरा में कोई मंत्र लिया, किसी भी कार्य विशेष को दृष्टिगत लेकर के उन्होंने उसको लिया और उसका धीरे धीरे उन्होंने दीक्षा ली, तो उसके आधार पर वो दीक्षा गुरु के पास जाते हैं। जो दीक्षा गुरु है तो दीक्षा गुरु उनके पास जाकर के भी वो उनको मिलना, पूजन करना, पूजन का अर्थ और मिलने का अर्थ, आजकल पूजा का अर्थ सिर्फ लोग सोचते हैं कि जो हम एक कर्मकांड करते हैं उसकी दृष्टि से उसका, ये कुछ आवश्यक नहीं है। जब अगर हम अपने गुरु के पास जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रणाम करके चले आते हैं, तो उससे उनके मन में या उनको भी एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। कारण इतना है कि पूजन का अभिप्राय है कृतज्ञता
1: जी।
0: अगर हम किसी भी व्यक्ति के पीछे कृतज्ञ हैं कि हमने सोचा कि मेरे गुरु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया या मैं आज अपने गुरु की कृपा से कुछ कर पा रहा हूँ, तो उनके प्रति मेरा एक सम्मान रहना चाहिए
1: जी।
0: मेरी एक कृतज्ञता रहनी चाहिए, मुझे एक न एक दिन जाकर के उनके पास जाकर के मिलना चाहिए। तो समाज में जो गुरु तत्व या गुरुत्व का या जो मूल आधार है वो है कृतज्ञता। यदि कृतज्ञता बनी रहे, अगर हमारे गुरु ने हमको पढ़ाया और हमने कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ाया था तो उन्होंने तो अपनी नौकरी की थी, कौन बड़ी बात की, एक पक्ष ये है। दूसरे ने कहा नहीं, उन्होंने हमें बहुत कुछ किया, दूसरा पक्ष ये है। तो जिस पक्ष ने ये कहा कि उन्होंने मेरे जीवन को संवारा है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं उनकी कृपा से आगे बढ़ा हूं, ये पक्ष है कृतज्ञता का। और ये पक्ष है कि कौन से उन्होंने क्या किया, वो है कृतज्ञता का। इसलिए कभी भी गुरु आचार्य शिक्षिता शिष्य निरोगाच चिकित्सका, हमारे यहाँ कहा गया है कि आचार्य से पढ़ने वाले बहुत से छात्र पढ़ करके निकल जाते हैं। कितने ऐसे शिष्य हैं जो अपने आचार्य को, अपने गुरु को याद करते हैं, बहुत कम करते हैं
1: जी,
0: बहुत कम करते हैं। परंतु कभी गुरु को इस चीज का कोई मलाल नहीं रहता है कि मेरे शिष्यों ने मुझे याद नहीं किया। परंतु जो शिष्य अपने गुरु को याद रखता है उस शिष्य के और जो शिष्य अपने गुरु को याद नहीं रखता, उन दो में बहुत बड़ा फर्क आता है। अगर आप इन दोनों को लेकर के

0: चलते हैं, एक अपने गुरु को याद रखने वाला और एक अपने गुरु को भूल जाने वाला, ये दोनों को अगर आप याद देखते हैं तो जो गुरु को याद रखता है उसके जीवन के बहुत से डाउट उत्तरोत्तर क्लियर भी होते हैं। कुछ नहीं तो अपने जा करके अपने गुरु से पूछ सकता है कि मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसके संदर्भ में क्या आपका हो, तो गुरु उसका उद्धरण देगा। जो याद नहीं रखता, जो कृतघ्न, जो इस प्रकार की स्थिति में पहुंच जाता है जहां हम उसको कृतघ्नता भी कह सकते हैं, उस स्टेज पे जाकर के उस व्यक्ति का धीरे धीरे जीवन में बिखराव रहता है। अगर वो आगे गया तो उसको कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, परंतु अगर उसके पास एक चैनल है तो वो जाकर के पूछ सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। इसको आज की दृष्टि में इसको मेंटर कहते हैं। हमको कम से कम एक मेंटर चाहिए, तो आप गुरु के रूप में लोगों ने, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ शब्द है, ये हमारा शब्द नहीं है, परंतु आजकल धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्थाओं में ये चीज आ रही है, वो गुरु को गुरु की व्यवस्थाएं नहीं है
1: जी।
0: तो ये बहुत से कारण है, ये लोकतंत्र की दृष्टि भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो हमारे चीजों को हम देश काल परिस्थिति के अनुसार बदल करके उनको लेते हैं। और नेचर का एक गुण है, इसीलिए हमने मेंटर की बात की, नेचर का ये गुण है कि उसको व्यक्ति को जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक है, उसी को हम गुरु कहते हैं। और आज हम धीरे धीरे उसके नए नए रूप दे रहे हैं, परंतु जो प्राचीन मध्यम था जहां गुरु का संबंध था, गुरु किसी भी चीज से बंधा नहीं रहता था। गुरु अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप गुरु जी को कुछ दे दो, नहीं है तो मत दो। उसने क्या कहा, पत्र पुष्प फल और तोय, ये चार चीजें कही गई है, और इन चार चीजों में से कोई भी चीज आपके पास आपने गुरु जी को दे दो, नहीं है तो जाकर के मिल लो। परंतु आज का जो दृष्टि है, आज हम हर स्टेप पर वहां पर आगे जहां हम धन के आधार पर परिसीमित हो गए हैं
1: जी। इन चारों का क्या अर्थ है मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: पत्र का अर्थ है कोई भी गुरु के पास जाए तो कोई पत्ता ले लो, हमने आम का पत्ता लिया, पीपल का पत्ता लिया, कोई भी समाज का कोई भी पत्ता लेके गुरु जी को दे दिया, उनके पास गए, खाली हाथ नहीं जाना
1: जी।
0: पुष्प है, कोई फूल ले लिया, फूल माला ले ली, गुरु जी के पास गए, आज गुरु पूर्णिमा है तो हमने भाई गुरु जी के पास गए, कुछ फूलों का गुच्छा ले गया या कुछ गुलदस्ता ले लिया, माला ले ली, गुरु जी को चढ़ा दिया,
1: चाहे चरण वंदन उन्हें पहनाई जी।
0: पुष्प ले लिया, पत्र पुष्प फल, कोई फल ले लिया, अतोय पानी ले लिया, जल ले लिया, एक कलश ले लिया, उस कलश में हमने आम के पत्ते डाल दिए, तो ये सब लेकर ईश्वर के पास जाने का भी यही विधान है। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो यही चीजें ले जाना, पत्र पुष्प फल तोय, और अगर गुरु के पास जाते हैं तो यही ले जाना है। हम गुरु तुल्य के पास भी जाते हैं तो यही विधान कहा गया।
1: भारतीय दर्शन में गुरु शिष्य की बेहद प्रेरक कथाएं हमारे सामने हैं। हम उनसे भी ये सीख सकते हैं कि जीवन में हम अपने लिए कोई भी लक्ष्य तय करें उसमें गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। प्रोफेसर देवी प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, बहुत ही रोचक ज्ञान आपने हमें ये दिया। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: अभी आप गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व विषय पर विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। आमंत्रित अतिथि थे प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी, डीन वेद वेदांत संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। भेंटकर्ता नीलम मलकानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका, और इस खूबसूरत शाम में बेहतरीन नगमों के साथ आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी खिदमत में तरन्नुम जहां। लीजिए सुनिए ये पहला गीत फिल्म आशिकी से।

साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

साथ रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। अब समाचार होंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया।

0: राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अल्लाह

0: ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7

0: सातवें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपये पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। Headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties, such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, said the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Dr. Singh criticized Leader of the Opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used.
4: The government repeatedly clarified that no bullets were fired and that tear gas was used. And if no bullets were fired, then the question of giving an order to fire does not arise at all. Moreover, the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister.
2: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Mr. Gandhi and demanded an apology from him in the House. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. On the passage of the anti-paper leak bill in the Lok Sabha, Education Minister Prahlad Joshi said the legislation aims to dismantle the paper leak ecosystem and increase transparency, credibility and fairness in the examination process. Home Minister Amit Shah has congratulated every student in India on the passage of the bill. In a social media post, Mr. Shah assured that the Narendra Modi government will spare no one who attempts to imperil the future of students and will leave no stone unturned to ensure that they face the full wrath of the law. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and making insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. Replying to a discussion on the bill, Minister of State for Home, Nityananda Rai, said the amendment in the bill reflects the collective commitment to the soul of India, national consciousness, cultural heritage, and the ideals of the freedom struggle.
4: I humbly urge the Honourable House to pass the Prevention of Insults to National Honour Bill 2026 unanimously and contribute towards further strengthening the unity and honour of our nation and preserving the immortal history of our freedom struggle.
2: After the passage of the bill, the Upper House was adjourned till tomorrow. Our correspondent brings a report on today's proceedings in both Houses of Parliament.
5: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, while the Rajya Sabha cleared the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Minister of State for Home, Nityanand Rai, introduced the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The lower house also extended the tenure of Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the winter session of Parliament 2026. Both Lok Sabha and Rajya Sabha also faced adjournments today as opposition created uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue, and due to this, question hour in both the houses could not be taken up. The Lok Sabha is scheduled to take up Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 tomorrow. The

तस्वीब कर राज्यसभा यानी मजलिस सनाए हिंद लाए ही रात तस्वीब कर के दौरान खास्त शुदे बूद के वंदे मातरम अज हिमायत कानूनी मुशाबे सरूद मिली बर खुरदार शबद व दरबाजी है मुश्ताकुल मुनाफे ग्लासगो नुह बक्सर हिंदी पस अज कस्बे सहमिया नीमे नहाय मैदान हायरा बराए किश्वर तजमीन करदंद वही नक मशरू है अखबार हिन हमलात आखिर वे चंद दिन किश्ती दरियाई दर तंग हुरमुजरा बेशिद्दत महकूम कर दे व गुफ्ते हस के हदफ करार दादा ने किश्ती हाय तजारी वजीर साख है गैर निजामी दर मंतक़े बायद पायान याबत परवाता नीनी हदीश नुमाइंदे दायम हिंद दर साजमान मिलल मुतहद गुफ्त के पसद याकूब वक्फ़े कूता दर दर गिरी है जारी दर मंतक़े हमला तो तशदीद खुसूमत है बतौर निगरान कुनंदी अज सर गिरफ्त शुदे अस आगा हरीश हमला बेचंदिन किश्ती दर हिन बुरे आनहा अज तंग हुरमुज दरिन माह महकूमियत शदीद हिंदरा इबराज कर वही गुफ के नावबरी व तजारत आज़ाद व बिद उन्हें माने अज तरीक आबराह बैन उमिलली बैद एहदाश शबद दर दो रोज़ गुज़श्ते दर जरियान सरकू बेवहशियान निरुहा पाकिस्तानी दर दौरान तशदीद न आरामी दर मंदगे हद अकल चहल नफर दर कश्मीर तहत अशगाल पाकिस्तान कुश्ते व दहा नफर जख्मी शुदांद हिजब मिली खल्क मुतहद कश्मीर रोज चहरशंबे बा इस्तनाद बे गुजारिश इद्याकद के हदूद चहल गैर निजामी कुश्ते व चंदी नफर दिगरीन बैन बिस्तो हफ्त बिस्तो बिस्तो हफ्तों बिस्तो हश्त में जुए दर रावला कोत मीरपुर व सारे मनातिक अशगाली जख्मी व खुसरान दस्तगीर शुदैन इन ग्रुप बा इब्राज निगरानी शदीद इद्याकद के अज पंजुम जून बीस अज सद नफर कुश्ते चंद सद नफर बेशिद्दत जख्मी व सदा नफर नीस तवसुत नी रुहाय अमनियती पाकिस्तान नापदी शुदियान हमजमान बाद तशदीद ना आरामी हा दर जम्मू व कश्मीर तहत अशगाल पाकिस्तान यक निहाद मुस्तनद साजी व नजारत ये हुकूक बशर अज दफ्तर कमिसारिया या आलिया हुकूक बशर साजमान मिलल मुत्तहिद पस अज गुजारिश आई मबनी बर तीरंदाजी मार्ग बार नीरुहाय पाकिस्तानी बेमोतरदान मुसालमत आमीज दरीन मंतक अशगाली दरख्वास्त मुदाखले कर दिया गुरुह नाजिर बर हुकूक बशर जम्मू कश्मीर मुस्तकर दर कश्मीर तहत अशगाल पाकिस्तान दर दरख्वास्त फौरी खुद बे वल्कर तुर्क कमिश्नर आली हकूक बशर साजमान मिलल मुत्तहिद इजहार दाश के इन कत्लेहा पस अज सरगीरी राह पैमाई तूलानी मुसालमत आमीज साजमानदे शुदे तवसुत हुकूमत अकदाम मुश्तरक अवामी अजरावाला कोत बे सिमत मुजफ्फराबाद रुखदा दियास जेरमी लारेंस सुखनगोई कमिसारिया आली हकूक बशर साजमान मिलल मुत्तहिद दर बयानी ऐलान कर के जुर्म अंगालिये जुर्म अंगारी एक साजमान जाम मदनी व एमाल महदूदियत हाय शदीद ब तजमुआत निगरानी है जदीरा दर मुरीद नक्ज हकूक आज़ादी बयान तजम मुसालमत आमीज व मुशारकत ईजाद मीकुनत दरपे जमीन लर्ज कुदरतमंदी के दिरुज मंतक कोमाम उतू दर जुनूब गरबी पुनर लर्जान सीधे नफर कुश्ते शुदन खत बार्क आसीब वसायल हमनाक व गरमा शदीद तलाशा इमदाद रसानी बेहदार नफर दर पना गहरा पेचीदे कर दिया कतार सरयू सर क्यू शो शें कानसेन व बरखी अज फालियत हाई फरुदगाही हमचिनन बिहालत तालीक दरामद यास जरा खसारात हनूज दरहाल अर्जाबीस सरबाजान व इमदाद गिरान बे अमलियात निजात इदामे में दहन नुखुज वजीर शापुन सानाए ताओकाईची गुफ के तलाशाई इमदाद व निजात दरमाना तक आसीब दीदे दरहाल अंजाम अस्त बिशद सीओ 6900 खाने हनुज बेदुन बारक हस्तन व शबक है इर्तबाती दरबार के मनातिक कार नमी कुनान डॉक्टर जयशंकर वजीर उमो खाजी निगरानी खुदा दर मुरीद जलजले इबराज कर दिया दुर्दुर जयशंकर दर पुस्ती दर रसान हाय इजतमाई हमबस्तगी व हिमायत हिंदा अज मरदूमो दौलत जापुन दर वाकुनिश में इन वजियत ऐलान कर मजलिस अवामीन यानी लोकसभा इमरुज लाई है इसलाही इम्तहानात उमूमी यानी जिलोगिरी अज वसायल ना आदरान साल 2026 तस्वीब कर
ان لائحہ درپئی اصلاح قانون امتحانات عمومی جلوگیری از وسائل نا عادلانے یہ سال 2024 است ان قانون شامل چندین ماد

داوم على حبي واسأل على نفسي.

लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त

कार्यों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। अमरीका ने ईरान की दो समुद्री सेवा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन कंपनियों पर आरोप है कि वे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थन से एक बीमा योजना चला रही थीं, जिसके जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों से धन वसूला जाता था। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने 8 अन्य कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाना है, जिनसे IRGC को मदद मिली।

गीत सुनहरे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे, तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, फिल्म मुगले आजम से लता मंगेशकर व अन्य आवाजों में।

क्या हुआ?

अभी आपने सुना ये गीत मन्ना डे और असरानी की आवाज़ों में। अगला गीत फिल्म गाइड से सुनवाते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत अंत में आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी की आवाज़ है और फिल्म हम दोनों से। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक में अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम जारी की है। एशिया के सबसे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी मंचों में शामिल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग

में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई

में किया जाएगा। श्री सिंधिया ने बताया कि इस बार की थीम है सीमाओं के बिना विस्तार, जिसका उद्देश्य भारतीय तकनीक और डिजिटल समाधानों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। बढ़ने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में भी भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जारी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान द्वारा अपने इस क्षेत्र में अपने अवैध कब्जे को छिपाने

0: चित्रा सिंह की आवाज के साथ है गीत गजल कार्यक्रम यही संपन्न होता है। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस सिद्धार्थ का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना जया जानकी कांता।

नाद ब्रह्म। आज के नाद ब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे तालम वाद्य कचहरी MV चंद्रशेखर की गायन, विलंबित तीन ताल, द्रुत लय विन्यास। आपके साथ में दंगम पर हैं MV चंद्रशेखर, वायलन पर R श्रीधर, घटम पर बने हुए हैं N कानन, तबले पर संगत की है बब्बर ललित ने, पखावज पर हैं मोहन श्याम शर्मा और सारंगी पर हैं एहसान अली।

आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे

5:20 पर सुनेंगे आप देशभक्ति गीत। रात 5:30 का वक्त है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का।

श्री रामचरितमानस से पाठ का आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग दो। संगीतिका, इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा आज सुबह 7:10 पर। रात 7:30 पर आप

प्रातः 9:15, 9:30 पर आप सुन सकते हैं मिट्टी दी महक। प्रातः 10:10 का वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का, और 11:10 पर स्वरांजलि। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026

विमानन ईंधन उत्पादन परियोजनाओं, प्रमाणन प्रक्रिया और वर्ष 2027 से संभावित मांग को पूरा करने के लिए ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शन में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है।